0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: مرج البحرين يلتقيان
0: उसी ने दो दरिया रवां किए जो आपस में मिलते हैं.
1: بينهما برزخ لا يبغيان
0: मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज नहीं कर सकते.

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: इनमें
0: दो चश्मे बह रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे? इनमें दो चश्मे उबल रहे हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

पांच दरियाओं के धारों की अमी है ये जमीन, इसके पासी है कुशादा दामन दिल और जबीन। लर्जा है दश्तो बयाबां देख कर है बत बलोच, रस्मगाहे जिंदगानी में है इन

सिंध है रोशन सितारों की तजल्ली का जहां, करिया करिया कूचा कूचा हर गली है कहकशां, हौसले हैं पर्वतों से अज़्म है परवाज़ में, खित्ता-ए-पख्तून है मखमूर हुस्ने नाज़ में।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back, hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: 101 FM
1: Cook Studio Season 15
2: Για το λουγίσι ασυνάργεστε κόμμα

This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

0: This is FM 101.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। AI, SaaS,
2: FinTech,
1: HealthTech, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
2: This is FM 101.

0: now you're tuned into
1: FM 101.
2: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: This is FM 101.1.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: This is FM 101.
7: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya. Sur aur sangeet, saazo awaaz. आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है
1: और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है।
0: पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स एआई सास
2: फिनटेक
0: हेल्थटेक। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर वन के लिए $6,000 और टियर टू के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
3: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। सुर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

Abulesire şu mavi mane. Başımla

0: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
1: This is FM 101.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत के आज़म का इआदा किया है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान पर जोर दिया है कि वो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करें। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह की 59वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फुटबॉल आलमी कप का पहला क्वार्टर फाइनल कल बोस्टन में मराकिश और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको एग डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
3: This is FM 101.
2: I love FM 101.
6: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: दिस इज FM 101।
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स AI, SaaS,
1: FinTech,
2: HealthTech। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वजीर आजम ने इक्तसादी सिफारतकारी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और कसीर जहती निज़ाम के जरिए फाल खारिजा पॉलिसी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और सनती सरमायाकारी के लिए आलमी सतह पर कशिश का बाइस बन रहा है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिनाह की 59वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान ने अक्वामे मुत्तहिदा में तनाज़ियात से मुतालिक जिनसी तशद्दुद के खात्मे के लिए मौसर आलमी इक़दामात का मुतालबा किया है।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
6: I love FM 101.
7: Suror Sangeet, Sazo Awaaz. आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

ये दुनिया झूठी, लोग लूट लेते अपने ही यहाँ। सर उठा के चल मगर कदम भी देख कर उठा। दुनिया बढ़ गई है सही और गलत की जंग में। मैं ना सही ना मैं गलत, मेरा नाम

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: I'm on the way, yaar. Bas aadha ghanta de.
2: Chal, fir jaldi kar.

मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।

тебе. सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: خود
1: सुनते रहिए FM 101 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने माली साल 2025-26 के दौरान 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने में पाकिस्तानी बरादरी के अहम किरदार की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर दाखला ने दहशतगर्दी, मुनशियात की स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के मुश्तरक चैलेंजेस से निमटने के लिए बैन अल-अक़वामी तआवुन पर जोर दिया है। फीफा आलमी कप का पहला क्वार्टर फाइनल कल बोस्टन में मराकश और फ्रांस के दरमियान खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: वज़ीर-ए-आज़म ने माली साल 2025-26 के दौरान 41 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजने पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर किया है। पाकिस्तान और क्रोएशिया ने अपने सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए इकदामात करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान इक़्तिसादी रवाबित मजबूत बनाने में पाकिस्तानी बिरादरी के अहम किरदार की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए बैन अल-अक़वामी तआवुन पर जोर दिया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

podcast. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर वन और टियर टू के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech, and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. Plus one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
2: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया।
3: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स एआई सास फिनटेक हेल्थ टेक। इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टीयर 1 के लिए $6,000 और टीयर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशंस जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: such.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें। ignite.org.pk पर।
3: सुर संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: Thank you.

0: sonar je tebe.
1: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। एक ही शख्स था जहान में क्या,

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी, कोई शक है क्या?

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

यूं तो उनसे और मिलना होता हमारा, और क्या, और क्या होता क्या हुआ, ये बातें बहुत अच्छी लगी।

मैं समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

इतना सब कुछ दिल में रह गया कि अब दिल की सुनूं तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

0: बारह बन गई मशीन।
1: Coming up next, RJ Talks on your radio dial. Keep it locked.

0: हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 10:33 और आज है जी 9 जुलाई 2026। कसन है और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरापी विद आज डॉक सार सईदा बिनते खतीजा ने ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। वकास अहमद, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। शो शुरू होया नहीं वैसे आज। थैंक यू वेरी मच। एनी वेज, आप लोग बिल्कुल ठीक है जी। मैसेज मिला है मुझे, आप गाने की फरमाइश किया। आज के दिन हम गाने सुनेंगे और प्ले भी वो करेंगे जो गेस्ट आया ना हमारा।
1: जी जी, ऐसे ही है।
0: उसके लिए प्ले करेंगे, तो आपकी ख्वाहिश ठीक है। ठीक है, मेहर फातिमा आगे पहुंचाते हैं, देखते हैं इसे। आई वुड लव टू प्ले इट। और इसके अलावा जो बाकी हैं आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई भी बात अगर पूछना चाहें, एनीथिंग, और अगर कोई फरमाइश करना चाहें तो सुनने के लिए, लेकिन वो फरमाइश जो सुनाई जा सके हम सुनाएंगे।
1: बाउंड्री के इस पार के।
0: तो वो वुड लव टू प्ले एंड आई विल डेफिनेटली आस्क हिम के वो गा सकें, तो बिल्कुल गा के सुनाएंगे। और अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना 4471 पर। और इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं सफ़ेद रंग पे, जो कि रिफ्लेक्ट करता है बड़े प्रोफेशनलिज्म को और आजकल काफ़ी ट्रेंडी भी है। और फिर इसके अलावा नीटनेस, और अगर आप जाएँ किसी भी लेबॉर्टरी या हॉस्पिटल या ऐसी जगह पर, वहाँ पर आपको सफ़ेद रंग ही मिलता है। इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि ये अमन के साथ साथ एक पीसफुल आपके माइंड को इम्पेक्ट भी देता है। और हर वो रंग, हर चीज़, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो कलर हैं ये खुदाए वाहदहु ला शरीक ने बनाए। हमारी आँखों की तरतीब और हमारे जो जिस्म की तरकीब है वो इस तरह से रखी गई है कि इसका इम्पेक्ट आता है बहुत ज़्यादा। सिर्फ आपकी ज़ात पर नहीं आता, ये आपके मिजाज पर भी आता है, आपके उठने बैठने पर, आपके सोचने पर, हर तरह की चीज़ों पे। आपके रंगों की चॉइस आपकी पर्सनैलिटी को भी रिफ्लेक्ट करती है। सो कलर चुनते हुए भी एहतियात किया करें, कोई आगे से ऐसा बंदा भी टकर सकता है जो आपको जजी आपके पहनावे से करें, चॉइस ऑफ कलर से करें। ज़िशान अली ने ज्वाइन किया, क्या हाल है? फाइन। अच्छा, फायजा है ज़िशान अली के नाम से, मैं पहले समझा मुंडा है। मैं फायदा हूँ। एनीवेज, अच्छा जी अब्दुलरहमान, ओके
1: जी,
0: कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, एंड हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, किस तरह से आपको शौक हुआ?
1: ये शौक एक बहुत यंग एज सी इस तरफ मेरा रुझान जो है वह पैदा हुआ। मुझे आज भी याद है कि मैं उस वक्त ग्रेड 2 में था और मेरी उम्र जो थी वो हार्डली 10 साल थी उस वक्त। एक हमारे म्यूज़िक टीचर थे स्कूल में, उन्होंने एक म्यूज़िक कंपटीशन इनकाद किया और मुझे एक गाना दिया गया कि ये तैयार करें।
0: बिल्कुल ठीक
1: है। उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था, सुरों का कुछ भी, लहका कुछ भी नहीं था आइडिया। बट परफॉर्म किया जब, तो मेरी फर्स्ट पोजिशन आ गई और उस दिन से मैंने ये फैसला किया कि मौसीकी में कुछ रखा है, इसमें कुछ एहसासात हैं, इसमें कुछ चीज़ है जो ज़िंदा है, हम महसूस कर पाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: जब आपके गम को कोई नहीं देख सकता, तब मौसीकी देख सकती है। ये चीज़ मैंने महसूस की और आज मैंने बहुत से मुकाबला जात जीते हैं, कराची में भी, लाहौर में भी, और अल्लाह की तरफ से ये एक हुनर है मैं समझता हूँ।
0: मैं एक और चीज एवेल्युएट कर रहा हूँ साथ साथ।
1: जी जी,
0: उर्दू बोल रहा है,
1: उर्दू हो रहा
0: है। उर्दू बोल रहा है। अभी लास्ट हमने थोड़ा सा डिजाइन भी ये किया है कि आप उर्दू बोलें तो सिर्फ उर्दू बोलें, क्योंकि हम यहाँ पे कम्युनिकेशन ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप कंफर्टेबल बोलो।
1: जी,
0: वो वहाँ पे है। यहाँ पे आप कंफर्टेबल बोलो। और ये माइक अगर आप ऊपर लगाओ, ये वाला ऊपर, हाँ यहाँ पे लगाओ,
1: ठीक है,
0: हाँ ऊपर इसको लगा लो। और पहला गाना जो आपने गाया
1: जी,
0: वो कौन सा था, थोड़ा सा गुनगुना के
1: चलें। पहला गाना मेरा जो था वो गुलाम अली साहब की गजल थी।
0: ओके।
1: और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, हंगामा है क्यों बरपा,
0: हाय
1: थोड़ी सी जो पी ली है।
0: हाय हाय, ये तो बत्तियां बंद कर दी।
1: तो उसको मैं थोड़ा सा आपकी नजर करना चाहूंगा।
2: प्लीज प्लीज,

0: बहुत आला
1: क्या बात है यार, क्या बात है, चासा आ गई इनका,
2: मजा दिला रहा लड़का,
1: मजा आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है। शकील अहमद ने मैसेज किया हमें 4471 पे, कहते हैं डियर डॉग सर सलाम वालेकुम। सलाम सर जी, इंसान की होप पे पानी फिरता है, मेरी तो सोचों पे वाटर वाटर हो गया। सोचा तो वाटर वाटर हो गया। इधर जुबैर साहब की कॉल है, जरा सुन रहे हैं, कोई हुक्मनामा ना हो। अच्छा जी, आज आपको और आरजे रहमान को देखकर हमारे सिंगर गेस्ट हैं, चलें आरजे रहमान,
2: आरजे अब्दुल रहमान
1: को देखकर आपकी वॉइस के अकॉर्डिंगली आपका इमेज माइंड में क्या था, धुआं ड्रामे के आशर जैसा था, लेकिन यू आर टॉल एंड चार्मिंग पर्सन, वो बड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी है। कैसी बात कर रहे हैं आशर साहब, बड़ा खूबसूरत ड्रामा अगर आपने देखा, आपने देखा है थोड़े से क्लिप्स?
2: जी क्लिप्स कुछ देखे,
1: क्लिप्स देखे, क्लिप्स देखे, बड़ा मजेदार सा। और आरजे रहमान को देखकर तो
2: ना बोले, ये जो है आपका एक आपका ही लेवल है आरजे वाला।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, अच्छा है यार, अच्छा, अच्छी बात है। और सर काइंडली खुश रक्सा आज प्ले कर दें, वो बैन हो गई, वो तब प्ले कर दिया था जब बैन नहीं था लगा, उसके बाद बैन हो गई, अब प्ले नहीं करूंगा, अगर वो प्ले करूंगा फिर मैं भी बैन हो जाऊंगा। मैं फातिमा ने इस्लाम किया, वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर, एक सॉन्ग प्ले कर दें जब्त का ओएसटी। अच्छा चले बोल सी, अभी यहाँ पे हम पूछते हैं, होके तूबा ने कहा जबरदस्त वॉइस, यंग बॉय को गजल गाते सुना, वो भी इतने सुर में, माशाल्लाह है ना, कितने सुरों में गा रहा है, अच्छा गा रहा है। फिजा राजपूत ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम सलमा ने कहा सजाद अली का आपने सुनाना है, वो हम बाद में
2: लाजमी
1: सजाद अली का लाजमी सुनेंगे, मैडम सलमा ने कहा। अब मुझे ये बताओ देन, आपने उसके बाद स्टार्ट किया वहां से,

0: फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हुआ, आपको इंटरेस्ट हुआ,
1: इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ,
0: इंटरेस्ट फिर आपने थ्रू आउट अपनी स्कूल लाइफ इसको पूरा कैरी किया।
1: बिल्कुल, मैंने इसको थ्रू आउट अपनी स्कूल लाइफ कैरी किया। जितने भी फंक्शंस होते थे डिफरेंट, 14 अगस्त का हो गया, 6 सितंबर का हो गया, या और भी रेजिंग डे हो गया, कॉलेज का हो गया, तो मुझे हमेशा फिर बुलाया जाता था कि कोई हो ना हो इसका अब्दुलरहमान का एक गाना तो है जो पहले स्केड्यूल है। मुझे भी नहीं पता होगा कि मेरा है, लेकिन उनको पता है कि मेरा है। तो आखिरी दिन या एक दिन पहले जो है मुझे बता दिया जाता था। तो गज़ल होती थी या कोई गाना होता था उसको गाता था, तो रुझान मेरा बढ़ा और इस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप होता रहा।
0: ये भी आपने लफ्ज़ रुझान इस्तेमाल
2: किया,
0: तो जेन जी बोल रही हो ना, मैं हैरान होता। अच्छा यार, उर्दू के लफ्ज़ बोल रहे हो, कहाँ से आज प्रैक्टिस कर गए?
1: नहीं, ये आपको सुन के ही हमने सीखा।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम रियली वेरी हैप्पी, मुझे अच्छा लगता है यार, एटलीस्ट अपनी जबान,
2: अपनी जबान,
0: आपको कम अज़ कम अपनी जबान से आगाही होनी चाहिए। वो तकाजा और है, तकाजे के मुताबिक आप जिस तरह की मर्जी मतलब चरबा बोलते रहें, मिक्स करके बोल रहे, उर्दू पंजाबी अंग्रेजी कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद आप चले और पहला कंपटीशन कहाँ पे आप गए थे? फर्स्ट एवर कंपटीशन।
1: पहला कंपटीशन मेरा लाहौर में ही, इधर मुरिदके में एक स्कूल है, चांदबाग स्कूल, वहाँ पर बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी
0: वहाँ पर पढ़ते रहे?
1: नहीं नहीं, अच्छा। मुझे वहाँ से मतलब वहाँ पर हुआ इनकाद हुआ वहाँ पर, तो फिर मैं उधर गया।
0: बिल्कुल ठीक है,
1: अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने। तो वहाँ पर जब मैंने देखा तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए, बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के, जीसी यूनिवर्सिटी के और इस्लामाबाद से, लाहौर से। मुश्किल मुझे बहुत लगा क्योंकि मैं कॉलेज में था और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट्स थे वो यूनिवर्सिटी लेवल के थे। जी, तो मुश्किल था, और लेकिन स्टेज पे गया इसी एतमाद से कि जब मेहदी हसन साहब भी स्टेज पे पहली दफ़ा गए थे तो उनके लिए भी मुश्किल हुई होगी, तो वो याद किया। और फिर मैं ऊपर जब चढ़ा स्टेज पे तो दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, ये गज़ल मैंने
0: गुनगुना दूँ फिर।
1: जी जी,
0: गुनगुना दूँ।

0: हुस्न के तारों से कम नहीं।
1: बहुत कमाल, बहुत आला।
0: दुनिया किसी के प्यार
1: आला। ओ वाह वाह वाह वाह वाह वाह
2: जबरदस्त,
1: वाह वाह वाह, बहुत आला, बहुत आला। और जितने लोग सुन रहे हैं सारे तारीफ कर रहे हैं। नायाब नासिर ने वैसी फरमाइश की थी, मेहदी हसन साहब आपको देखें, फरमाइश आपने की उससे पहले ही, और आप तक मेरा ख्याल है आप तक पहुंच भी चुका होगा। जबरदस्त हो गया, थैंक यू वेरी मच, आई एंजॉयड। एंड तमाम सुनने वालों से मैं कहूंगा आप अपना बताएं, पेज आपका है या इंस्टा
3: थोड़ा सा बताना। इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे AR नासिर के नाम से मेरा चैनल है। तो तमाम सामईन से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि वहां पर भी कनेक्ट करें मेरे साथ।
1: हाँ जरूर, AR नासिर आपने सर्च करना, और मैं कोशिश करूंगा अपनी पोस्ट लगाता हूँ वहां पे, अपने पेज पे भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा लिंक, और आप लोग जरूर फॉलो करें, जरूर कनेक्ट करें, और वहां पे लाजमी कोई ना कोई अपडेट भी आती होगी, कोई गुनगुनाते हुए हाय हाय हाय। मैडम सलमा ने भी तारीफ की है, मैडम सलमा काफी उम्र गुजारी है उन्होंने सुनते हुए, शी इज अप्रिशिएटिंग एक्चुअली। फिर बंदा फील करता है यार कोई बड़ा बंदा इस तरह
3: है, कुछ बात है
1: ना, फिर बंदा कहता है हाँ यार आई एम डूइंग वेल ना, कुछ तो कर रहा हूँ मैं। ओके जबरदस्त हो गया। अभी मैसेज आया है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने तो चांद सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ ना मिला। बिस्मा आजम, ओए होए होए होए, फ्रॉम लाहौर। मैं ठीक हूँ, मैंने पूछा था। अच्छे सर आपने खुद ही बता दिया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वाह आज तो आप जल्दी आ गए हैं ना। आज मैंने कहा जल्दी चला जाता हूँ, ये ना हो मैंने गेस्ट बुलाया, गेस्ट पहले आ जाए, और गेस्ट भी वो है जिसे आजकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन्हें कहा साडा ट्रेनर ही ये हो जाए।
2: खुद टाइम भी नहीं आते।
1: ओके काल पे बात करना मुश्किल है बाबा, मेरी तौबा नहीं, ट्राई करें शायद मिल जाए। जब वो हंसता है तो मस्ताना कमल, मस्ताना कमल लगता है, मीर का शेर या गालिब की गजल लगता है। वेलकम आपको एंड आज के आपके गेस्ट को भी। ओके थैंक यू वेरी मच। हम मोहसिन, मोहसिन का भी नाम लिखा है ये ना यार, मोहसिन तुम्हारा नाम भी लिख दिया यार। सुलेमान चांडिया बलूच आए हैं, इस्लाम किया वालेकुम सलाम। जवेद औलख हैं, इस्लाम किया वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम टू ऑल। ज़ारा अटक से सुन रही है, वेरी इंटरेस्टिंग शो, थैंक यू वेरी मच। नवाल हैं और कलब आबाद से हैं, और कलब आबद मुस्तरस को हैं, मैं कलब आबद मुस्तरस को याद करता हूँ, मैं रोज़ शाम को बाजार से गुजरता हूँ। मुजतर तो नहीं है ये, ये थोड़ा सा देखें इसको, नवाल दोबारा से लिख के भेजें। और जावेद औलक हैं, फर्ज करो तुम मेरे हो, और फर्ज कभी छोड़े नहीं जाते। यार बड़ा अच्छा कहा तुमने, आई लाइक इट। फर्ज करो तुम मेरे हो, बात जो कह रहा अब ये फर्ज कर दिया तुमने, खबरदार है छोड़ा गुनाह मिलेगा तुम्हें, फर्ज क्योंकि छोड़ा नहीं जा सकता,
3: क्योंकि छोड़ा नहीं जाता।
1: हाँ मुस्तर, हाँ देखा बाद में नवाल ने करेक्शन कर दी, चलो ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अफसर अली खान है, सन ऑफ पीर दाद खान, आगे पूरा एड्रेस लिख दिया आपने, सवाबी से हैं, थैंक यू वेरी मच। सर आपकी आवाज़ लाउड एंड क्लियर है, लेकिन स्ट्रेंथ 4 क्वालिटी है, और कानों को लग रही है, लगता है माइक बिल्कुल नज़दीक है, एडजस्ट करवा लें। यार चेक करना शायद जी, जरा चेक करें वो इस्लामाबाद वालों का कहीं हाई तो नहीं है आगे से, वॉल्यूम जरा चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंजुम साहब हैं सवात से, पाकिस्तान आर्मी से सुन रहे हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत सारा प्यार है आपके लिए, और आप कह रहे हैं आपके शो, आप मेरे शो को सुनते हैं, बहुत मज़ा आता है, कोई पश्तो सॉन्ग सुना दें, पश्तो सॉन्ग भी कोशिश करते हैं। पश्तो आता है कभी गाया कोई?
3: नहीं
1: आता। अच्छा आगे गाए लोग जब बड़े स्टेज पे, बड़ा इंशाल्लाह फेमस सिंगर बनने वाला। मैडम सलमा है DH लाहौर से, हाय डॉक्स, आज सजाद अली को सुना दें। आज मैडम आपको लाइव सुनवाएंगे
3: जी,
1: रहमान की आवाज में। जारा ने आपकी आवाज को पसंद किया, बड़ा खुश हुई है। और बिल्कुल अंजुम भाई, बिल्कुल हम प्ले करेंगे, वुड लव टू प्ले जी आपके लिए पश्तो, बिल्कुल प्ले करेंगे। लेट मी चेक, न्यूज ब्रेक
3: खत्म हो गई।
1: Oh shit, sad. Okay, अच्छा जी अब आगे हम बढ़ते हैं। आपने फिर पहला वहां पे कंपटीशन
3: जी जी
1: किया, उसके बाद फिर
3: तो उसके बाद फिर मेरी जब थर्ड पोजीशन अनाउंस होने लगी, क्योंकि थर्ड से फिर शुरू करते हैं, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, तो मुझे ये था कि बहुत भी हो गया तो थर्ड पोजीशन ही आएगी, सेकंड और फर्स्ट पे तो सोचना भी नहीं। लेकिन थर्ड जब नाम लिया गया तो वो किसी और यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था।
1: अच्छा।
3: तो आधा मैं उसी वक्त टूट चुका था।
1: अच्छा।
3: और मैं रास्ता देख रहा था बाहर जाने का।
1: आपने कहा मेरी कहाँ से आनी,
3: मेरी थर्ड नहीं है तो मैं कहाँ, मतलब अभी लायक करता हूँ 50-60 कम से कम कंटेस्टेंट्स थे। तो सेकंड फिर सुना तो फिर से मेरा नाम नहीं आया,
2: फिर तो आपने उम्मीद ही छोड़
3: दी। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैं बाहर, मैं उठने भी लगा था बाहर जाने के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि बाकियों ने कहना यार इसमें स्पिरिट नहीं है किसी की जीत देखने के लिए,
2: ऐसा ही है।
3: तो मैंने कहा चलो बैठते हैं। और फर्स्ट जब पोजीशन अनाउंस हुई तो उन्होंने कहा कि अब्दुलरहमान नासिर की।
1: तो कैसी फील, कैसी थी?
3: मेरे तो हाथ पांव कांपने शुरू हो गए।
1: दैट वाज द फर्स्ट एवर,
3: दैट वाज माय फर्स्ट एवर अचीवमेंट।
1: क्या बात है। और उस वक्त फील और होती
3: है, उस वक्त और ही फील होती है,
1: बिल्कुल फील और होती है जब स्टेज के ऊपर से आपका नाम अनाउंस हो। क्योंकि मैं तो गाना शाना तो नहीं, खैर मैं गा सका क्योंकि मेरे अब्बा को पसंद नहीं था और उन्होंने मुझे बीच राह में रोक लिया। फिर उन्होंने कहा अगर तुम बाज नहीं आओगे तो फिर मैं कोई और हाल निकालूंगा। लेकिन मैं क्योंकि डिबेट कंपटीशन में जाता रहा,
3: डिक्लेमर हैं आप,
1: तो वहाँ पे अनाउंस होना,
3: बिल्कुल
1: बंदा कहता है ओ माय गॉड। और पहली दफ़ा आपका अनाउंस होना, आप समझ नहीं आ रही होती, यकीन नहीं आ रहा होता, अच्छा मैंने कर लिया वाकई,
3: ऐसे ही है बिल्कुल।
1: उस वक्त यही फील होती है, आपको भी यही फील,
3: आप भी परफॉर्मर हैं आपको पता है कि ऐसे ही एक
1: कैसे
3: हो गया।
1: और ये उसी वक्त होता है जब आप अपनी बेस्ट इनपुट देते हैं
3: जी।
1: और उस वक्त आप इनपुट पे, जब आई रिमेम्बर के फर्स्ट टाइम मैंने किया था, मैंने ये नहीं सोचा, मैंने कहा यार पोजीशन आती नहीं आती, मुझे परफॉर्म करना, मुझे अच्छा परफॉर्म करना। तो मेरा ख्याल है आप भी उस वक्त इसी तरह गए कि मुझे परफॉर्म करना
3: है,
1: क्योंकि इतने लोग देख के ना ऐसे ही लगता है यार मैं सारों में फारिग हूँ,
3: ऐसा ही है,
1: इतने बंदे
3: बिल्कुल ऐसे।
1: लेकिन आप जेन्युइनली ब्लेस्ड हो, गॉड गिफ्टेड हो, माशाल्लाह बहुत अच्छा,
2: बहुत अच्छी आवाज है,
1: बहुत अच्छी आवाज। अभी एक सवाल पूछना है आपने जी।

0: ऑलराइट जी, यहाँ पे हम एक पहला क्वेश्चन पूछते हैं और पहला क्वेश्चन रहमान पूछते हैं। रहमान, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले नोबल प्राइज जो पहला था वो किसने,
2: विनर कौन थे,
1: अपने नाम किया, वो कौन विनर थे?
0: चले जी, ये पहला सवाल आ गया और अब इसके लिए आपने कॉल करनी है 0422111 0412 1110001001। इस पे आप कॉल करेंगे और अभी हम कोई यहाँ पे गाना लगाते हैं। कौन सा लगाएं जी, सजाद अली का या
1: सजाद अली का? आप
0: कौन सा गाना सुनना चाहें?
1: हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ।
0: हाय हाय हाय हाय, किसने जुल्म किया?
2: बड़ी छोटी एज में हो
0: तुम तो, ऐसे कह रहे जैसे तुम पे नहीं हुए थे, बड़े हाजी बन रहे है ना। एनीवे जी, डोंट गो एनीवेयर, आप सुन रहे नाइट थेरेपी विद आरजे टॉक्स। वापस आके हम क्वेश्चन जो दिया उस पर भी बात करते हैं और वाइट कलर की साइकोलॉजी पे भी विल स्टार्ट डिस्कशन, और साथ साथ हम अब्दुलरहमान आसर से भी गुफ्तगू जारी रखते हैं।
3: साहिल पे खड़े
0: I love this track.
3: तुम्हें क्या गम, चले जान।
0: गाना नहीं है, एक फील है। गाना हमेशा आपको वही पसंद आता है जो आपको कनेक्ट करे, आपको लगे कि हाँ ये मेरी कहानी है। गुफ्तगु, बात, एक्ट, हर चीज वही पसंद आती है और मुझे भी वही चीज अपील करती है। और कुछ अल्फाज, कुछ बातें, कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि लगता है हम सबकी शायद एक जैसी है। वो जिसने दिल तोड़ा उसके लिए भी, जिसका टूटा उसके लिए भी। फिर मैं सोचने लगता हूँ आखिर गलत कौन था। बहरहाल कोई एक तो गलत होगा, वो गलतियाँ कहाँ हुई। कभी कभी दोनों ठीक होते हैं अपनी अपनी नजर में, और फिर दोनों ही गलत होते हैं एक दूसरे की नजर में।

0: हेलो जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:11 और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स। और आपका मेरे साथ होता है बुध और जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन किया है हमें अब्दुलरहमान ने, और ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम होपफुली आपको बड़े स्टेज पे देखेंगे
1: इंशाल्लाह।
0: मैं बेस्ट विशेस।
1: थैंक यू।
0: और अभी हमने एक सवाल भी पूछा है, और सवाल के साथ साथ हम बात करते हैं सफ़ेद रंग के बारे में। सफ़ेद रंग जो है वो क्या करता है और किन लोगों को पसंद होता है, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली जो ऑब्ज़र्व किया गया है, बड़े साफ दिल के लोग होते हैं, ईमानदारी इनको पसंद होती है, मुनज़्ज़म सी लाइफ गुजारना पसंद करते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, नरम मिजाज, बड़े सॉफ्ट से होते हैं, और इसके अलावा महज़ब होते हैं, तहजीब के दायरे में रह कर गुफ्तगू करना पसंद है, और पेशेंस लेवल इनका अच्छा होता है, असूल पसंदी होती है, और काबिल एतमाद, यानी यू कैन ट्रस्ट दैम, ऐसे लोग होते हैं। और फिर इसके अलावा ये दूसरों का एहतराम करते हैं। इनकी जो खूबियां हैं उसके बारे में बात की जाए, झूठ बोलना इनको बिल्कुल पसंद नहीं, और कोशिश करते हैं जो बात करें उसको पूरा करें, और लोगों की मदद करना इन्हें पसंद है, बेमकसद की बहस से बचते हैं। और फिर अगर वीकनेस की बात की जाए इनकी, तो वीकनेस में समटाइम वो OCD के लेवल पे चले जाते हैं, परफेक्शन बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद होती है कि नहीं, हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, हर तरह से अच्छा काम करना चाहिए। और फिर उसमें ये खुद पे सख्ती भी करने लगते हैं, ओवरथिंकिंग भी करते हैं, और फिर इमोशंस छुपाने का आर्ट भी इन्हें थोड़ा थोड़ा आता है, और कन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए जहाँ पर इन्हें बोलना चाहिए वहाँ पर बोलते भी नहीं है। बाकी आगे चल के बात भी करते हैं इस पे। तो हमने सवाल क्या पूछा था, व्हाट वाज द क्वेश्चन?
1: क्वेश्चन ये था कि पहले नोबेल प्राइज के विनर कौन थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में।
0: ओके, हम कॉल लें फिर चेक करें।
1: जी जी,
0: आप हमें कॉल करेंगे, बताएंगे, और जो हमें बताएगा उसे बिल्कुल वेलवीरा कंपनी की तरफ से, जिनके प्रोडक्ट्स हैं आपकी स्किन केयर के हवाले से, और उनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड है, एंड यू विल गेट 1000 रुपीस का जो प्राइस है वो आपको मिलेगा। ओके, मेरा हाल ठीक है जी, थैंक यू आकाश, बहुत शुक्रिया। और सलमान चांडिया बलोच कह रहे हैं, वेरी क्यूट पर्सनैलिटी रहमान,
1: थैंक यू,
0: आपके बारे में कमेंट कह रहे हैं, ब्यूटीफुल शो। फरीन शहजादी फरहीन ने बड़ा पसंद किया आपके गाने को,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बड़ा मज़ा ले रही हैं। शाइनिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान फिजा राजपूत कह रही हैं, ऑफ कोर्स वन डे यू विल सी हिम इंशाल्लाह। कैसर फैसल ने ज्वाइन किया, इस्लाम किया लाहौर से, क्या हाल हैं, इतने दिन के बाद शो सुनने को मिला है। हाँ जी, क्योंकि मैं गायब था, मैं छुट्टियों पे था। हाँ, गॉड गिफ्टेड तो हैं, साथ मेहनत भी करते हैं, बिल्कुल आपने सही लिखा। गोना टेक द कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
2: सर बोधी जट गल कर रहे हैं सर।
0: जनाब जट साहब की हाल है, ठीक हो?
2: ठीक ठाक सर, जबरदस्त शो सर, राती दे शो दे एंड दे आ गए, पूरी है रौनकां लाती है हम सर।
0: सही कह रहे हैं।
2: क्या बात है सर। रहमान साहब तुहानू भी सलाम सर
1: जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका
2: सर, तुहाडा मेहमान असीं सर जी आयां नूं कहिंदे आ।
0: बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया
2: सर। माशाल्लाह सोलह प्रोग्राम तो सोहनिया गल्लां हर तरह दी तरह सर, राती दे सर बड़ी कोशिश कीती लेकिन नंबर नहीं मिलिया, लिखिया कोई हल नहीं, शो ते साबां दा सुन ही रहे सी।
0: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। कुछ कहना चाहोगे
2: सर? असीं की कहना चाहांगे, असीं बस तुहाडे नाल गल करनी सी सर, हो गई है।
0: चलो,
2: सुभान सुनना लैणे साडा सलाम ते पाकिस्तान जिंदाबाद सर।
0: जिंदाबाद, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
2: ओके
0: अल्लाह ओके
2: अल्लाह।
0: अच्छा जी, अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
3: जी। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं मोहम्मद अवैस इस्लामाबाद से बात कर रहा
0: हूं। ये अवैस क्या हाल है, ठीक ठाक हो?
3: अल्हम्दुलिल्लाह सर, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। और आपके पास तो सिंगर बैठते हैं, माशाल्लाह अच्छा गाते हैं।
0: बहुत अच्छा गाते हैं,
1: बहुत शुक्रिया आपका।
3: बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छी आवाज है इनकी, और
1: बहुत अच्छा
3: प्रोग्राम कर रहे हैं सर।
0: थैंक यू।
3: आज वैसे मैंने भी सोचा था कि आपको थोड़ा मैं सुनाऊं, क्या है हाल है आपका?
0: सुनाए
3: जावत
0: है? जी जी सुनाए। आपका आलाप बहुत दूर चला गया
3: जी सर,
0: आलाप दूर चला गया, करीब आ
1: गए माइक के करीब थोड़ा सा।
3: अच्छा जाएगी अभी जा

0: आओ जरा करो मेरी हालत संभल जाए।
1: वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: अभिजा
1: बहुत अच्छा वैस छा गए हो, जबरदस्त जबरदस्त।
0: बहुत खूब,
1: थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। हमने एक सवाल किया
0: जी सर। सर वो जो आपने अभी पूछा सर, अभी आप बता रहे थे कि आपको कौन सा रंग पसंद है, आपने सफेद की बात की तो
1: नहीं सवाल मैंने
2: सवाल
0: जी जी सर बताएं,
2: पाकिस्तान का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था?
0: मेरे ख्याल में मोहतरमा फातिमा जना।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको इस पे हम कुछ नहीं देंगे,
2: कुछ नहीं दे सकते।
1: वो हयात होती है तो उन्हीं को मिलता। चले थैंक यू वेरी मच अवैस, थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चले जी अभी मेरा ख्याल है कोई जवाब नहीं आया, फिर एक बार लेते कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नीला जी, आप खैरियत से?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह।
1: बड़ी गल है आपकी भी कॉल मिल गई
3: है ना।
1: हाँ जी
3: मैं तो परेशान थी, 6-7 बार पहले भी मिल चुकी है अभी इसी शो में। अच्छा। लेकिन मिल नहीं रही।
1: हाँ मिल रही थी लेकिन मिल नहीं रही।
3: अच्छा। बस ऐसे ही है, चलिए खैर कोई बात नहीं। आपके गेस्ट को बहुत बहुत वार्म वेलकम और अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान।
4: अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और बहुत जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज,
4: बहुत शुक्रिया
3: अल्लाह ने आपको अता
4: किया। मैं बहुत शुक्रिया, मैं आरजी डॉक्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इनवाइट किया आप सबको ये सुनाने के लिए। तो आप एक बार फिर मैं सर से बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इन्होंने हमें बुलाया आप सब आप सबके लिए।
1: बहुत अच्छा
3: बहुत
1: गाता,
3: खूबसूरत काम किया
1: उन्होंने। नहीं बहुत अच्छा गाता है ना,
3: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज है और सुर बड़े जबरदस्त हैं, कमाल
2: पक्के सुर हैं
1: है ना।
3: पक्के सुर। और मैं सुन के भी मैं ये गुलाम अली को गाना कोई आसान बात नहीं है,
1: बिल्कुल ठीक बात है।
3: मेहंदी हसन को इतना खूबसूरत आपने अभी गुनगुनाया, बहुत खूबसूरत। और मैं फरमाइश करने वाली थी कि मेहंदी हसन को, लेकिन आपने खुद ही चले माशाल्लाह
1: सुना दिया आपको हमने।
3: जी जी, और अब भी अवैस की अच्छी कोशिश करके कि अच्छा गाते हैं।
1: हाँ। जो हमने सवाल पूछा था ना वो हम बदल रहे हैं आपके लिए। आप बहुत होशियार
3: हैं, मुझे आना ही ना जाएगी।
1: हाँ नहीं नहीं आप बहुत होशियार हैं इसलिए बदल रहे हैं।
3: नहीं होशियार तो नहीं,
1: मोहसिन क्या है सवाल?
3: हाँ मोहसिन आपको भी अस्सलाम वालेकुम।
2: जी जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है मैडम
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, डॉग्स की बातों में बिल्कुल नहीं आना।
1: सवाल बदल लो।
2: अच्छा चले मैडम,
1: चलो उसी सवाल को थोड़ा
2: उसी सवाल को हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। आप ये बताइएगा कि नोबेल प्राइज कब मिला था, पाकिस्तान का पहला नोबेल प्राइज कब मिला,
1: किस सन में
3: मिला,
2: किस सन में मिला,
3: किस सन में? तो मुझे
1: नहीं। सवाल बदलता
2: ये तो
1: मैं तो सिर्फ नाम पढ़ के आई थी,
2: तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन।
3: फोन पर कह रहे हो कि चलो तुम गूगल कर लो, साडे वर्गा हुन गूगल कर भी लवेगा तो उन कुछ नहीं लगा। वैसे आप अब जाती ना ऐसे तो ना करे। वैसे यू नो कि मेरे लिए गूगल करना।
2: मैडम एक और ऑप्शन दें आपको,
3: दे दें
2: एक और क्वेश्चन करते हैं।
3: करें करें चलें कोशिश
2: करें। ये नोबेल प्राइज मिला किस वजह से था?
3: अच्छा चलें, ये मिला था अब डॉक्टर अब्दुल सलाम को, और मेरा ख्याल है कि ये जी जी इनको फिजिक्स की किसी थ्योरी पे मिला था, कुछ इन्होंने कोई कुछ किया था फिजिक्स की किसी थ्योरी पे।
1: ये दो नंबरी हुई है यहाँ पे बाहर।
2: ये
1: आपको बूटी गिराई गई है यहाँ पे। ये गलत हुआ बाहर, ठीक है जी।
3: मेरे पास ये कह पड़ा हुआ था बड़ी देर का, लेकिन मैं कंफर्म नहीं, मुझे हो रहा था डॉक्टर अब्दुल करी, नहीं डॉक्टर अब्दुल सलाम, नहीं डॉक्टर अब्दुल करी।
1: चले चले जबरदस्त हो गया, आप लाइन पे रहिएगा हमारे साथ जी, लाइन पे रहिएगा प्लीज
3: जी, थैंक यू।
1: ऑलराइट जी, मैडम अनिला की कॉल थी और हमने सवाल बदला लेकिन उन्होंने फिर भी उसका जवाब दे दिया। शादीब शाजू ने हमें ज्वाइन किया, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं और इसके अलावा ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। और लेट मी रीड सम मैसेजेस फ्रॉम 4471 से। और निमल कहती हैं, वाह एक्सीलेंट, बहुत अच्छा गाया। और रहमान भाई, गज़ल थोड़ी गाते हैं आप, ज़्यादा वाह वाह कर रहे हैं सर, मुझे मज़ा आ रहा था। ज़ारा आज़म है फ्रॉम कोटली एजे के, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज़ से सलाम टू मेजर आबिदुर रहमान ज़िया। ओके, मेरा ख्याल है उनको पहुंच गया होगा। प्लीज़ प्ले एंड डेडिकेट दिस सॉन्ग टू माई हस्बैंड, आपकी नज़रों ने समझा। ये मैं गाना चला नहीं सकता, आई विश आई कुड प्ले, लेकिन मैं नहीं चला सकता। और इसके अलावा कोई और अगर गाना होता तो मैं ज़रूर चलाता। और अंजुम साहब कहते हैं, हवा हवा खुशबू लुटा दे, वही चला दे। सर चलाना पड़ेगा आपके लिए, चला के जाऊंगा मैं यही गाना, एंड पे चला के जाऊंगा। सायमा रफीक साहिबा लाहौर से मैसेज करती हैं, इस्लाम की आज मोहसिन आज डॉक्स और आपके गेस्ट जो हैं अब्दुलरहमान भाई को बहुत खूबसूरत आवाज़ है और सुरों की बेहतरीन अदायगी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया।
4: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, आप सारे पसंद कर रहे हैं। और जिशान रोकड़ी के सॉन्ग ही लगा दो भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, आया नू और गेस्ट को भी वेलकम किया, थैंक यू वेरी मच जी। आप लोग भी प्रोग्राम में मैसेज कर सकते हैं और अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पर। और अभी यहाँ पर किसी ने पूछा था जी किस तरह कॉल की जा सकती है, अपने मोबाइल से आप मिलाएँगे 0421100101, 0422111001, इस पर आप कॉल करें और प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। और ज़िमल आई है, नाइस शो, सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा फिर रहमान, उसके बाद फिर आगे आपकी जर्नी कैसे चली?
4: उसके बाद एक दो और कॉम्पिटिशन्स में भी पार्ट लिया क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो गया था।
1: अच्छा,
4: और उनमें भी फिर मेरी अच्छी पोजीशंस आईं, एक में फर्स्ट आई, एक में सेकंड पोजीशन आई। और उसके बाद उसी इवेंट में जहाँ पर मैं फर्स्ट पोजीशन मैंने ली थी, वहाँ पर एक नामवर चैनल के एक प्रोड्यूसर मौजूद थे,
1: बिल्कुल ठीक है,
4: उन्होंने मुझसे वहाँ पर बात की और कहा कि आप हमारे एक रात को एक टॉक शो हमारा आता है
1: जी,
4: उसमें प्लीज़ आप आइएगा और एक गाना आपसे गवाना चाहेंगे।
1: अच्छा,
4: तो उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हारून रफीक साहब,
1: बिल्कुल ठीक है,
4: उन्होंने मुझे चांस दिया।
1: अच्छा,
4: अपने शो में
1: ज़बरदस्त,
4: और उसमें परफॉर्म मैंने किया तो बहुत अच्छा, लोगों ने, मैंने पहले अपना स्टार्ट ही टीवी से जब किया तो मैंने कलाम इकबाल से स्टार्ट लिया।
1: अच्छा,
4: कलाम इकबाल, ला फिर एक बार वही बादा हो जाम ऐसा की शबनम मजीद का ये कलाम था, तो इससे मैंने ये स्टार्ट लिया।
1: थोड़ा सा गुनगुना दो ना
4: जी। ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, बादाओ जाम मैं साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम है साकी, ला फिर एक बार वही।

0: शेख कहता है कि है, शेख कहता है कि है, ये भी हराम है साकी, हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम है साकी। ला फिर एक बार वही बादाओ जाम है साकी।
1: क्या बात है। और उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आते रहे।
2: उसके बाद मेरा एक इस तरफ भी मेरा रुझान बढ़ चुका और बहुत से पीटीवी वर्ल्ड पे भी और पीटीवी होम पर भी मुझे मौका मिला फॉर्म करने का। शहजाद सर के साथ भी इंटरव्यू हुआ पीटीवी वर्ल्ड पे, तो काफ़ी एक्सपोजर गेन किया।
1: इसके बाद और कौन?
2: और बहुत से पीटीवी वर्ल्ड पे भी और पीटीवी होम पर भी मुझे मौका मिला फॉर्म करने का। शहजाद सर के साथ भी इंटरव्यू

0: टू मिनट्स की परफॉर्मेंस की वीडियो मंगवाते हैं और उसकी बेस पे कुछ जजेस होते हैं, वो आपको शॉर्ट लिस्ट करते हैं.
1: ओके.
0: तो वो मैंने लास्ट ईयर किया था और उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी. और वो मैंने सजाद अली का एक गाना गाया था, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं.
1: दिल लगा नहीं.
0: तो बहुत लोगों ने उसको पसंद किया और उसकी वजह से मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी.
1: सबसे फेवरेट गाना आपका कौन सा है?
0: सबसे फेवरेट गाना, अब ये थोड़ा सा
1: जो आप खुद भी अकेले में बैठे ऐसे हल्का फुल्का वैसे ही गुनगुना तो.
0: अब ये डिफरेंट है, मूड की मुनासबत से है और जॉनरा भी अलग अलग है. किसी को कोई क्लासिकल गाना कभी ध्यान में आ जाता है, कभी सेमी क्लासिकल.
1: लेटेस्ट कौन से सिंगर अभी जो चल रहे हैं
0: आजकल? सजाद अली को ही सुन रहा हूँ अभी भी, हमने उनको सुना है. तो
1: इसके अलावा जो बाकी अभी के एरा में चल रहे हैं, अच्छा, यंग जनरेशन में किसको सुनते हो आप?
0: यंग जनरेशन में हमारा एक बैंड है आजकल इवॉल्व कर रहा है, काफ़ी इमर्ज कर रहा है रादर, बयान.
1: बयान कर रहे
0: हैं. उनके गाने बहुत अच्छे हैं, वो मैं सुनता हूँ आजकल.
1: और गुनगुनाते भी हो, उन्हें भी गाते हो आप?
0: सुनता ज़्यादा हूँ उनको, गुनगुनाता थोड़ा कम हूँ.
1: और गुनगुनाते फिर यंग में जो है किसको गाया?
0: यंग में डिफरेंट गाने सुनता रहता हूँ, लेकिन ये है कि अभी याद मेरे जहन में कोई आ नहीं रहा कि मैं कौन सा नाम लूँ किसी.
1: आतिफ असलम.
0: जी जी, आतिफ असलम के तो गाने हर दिन ही सुनते हैं तकरीबन, कोई ना कोई आ जाता है सामने
1: कोई अपनी पसंद का.
0: अच्छा.
1: आतिफ का
0: देखते देखते ये एक उनका गाना है जो उन्होंने मतलब रीमेक किया है नुसरत अली खान साहब की, जो कवाली थी सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे.
1: हाँ.
0: रज के रुलाया, रज

एक पल ना जल हुए वो जो आँखों से एक पल ना जल हुए लापता हो गए देखते देखते सोचता हूँ सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते।

0: देखते देखते
1: बहुत आला, बहुत आला, बहुत जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त हो गया। अभी यहाँ पे हम मैसेज शामिल करते हैं जी। रावलपिंडी से अवैस ने मैसेज किया, कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच, लकी बॉय सवाद से सुन रहे हैं, लव यू सर। कहते हैं जुलाई का स्टार बता दे जोडिकल साइन, यकम जुलाई से 22 तक अगर है तो फिर आपका कैंसर है, और अगर उसके बाद 23 से ऑनवर्ड है फिर आपका लियो है। तो ये तो बता दिया मैंने, इसके अलावा और क्या है। वाइट कलर पर हम बात कर रहे हैं, अगला सवाल भी अभी हम आपसे पूछते हैं। और विनर हमारी पहले एक क्वेश्चन की थी मैडम अनीला, और वाइट कलर पे हमारी बात चल रही है और उस पर साथ साथ गुफ्तगू किए जाते हैं वाइट कलर के हवाले से। मैंने बताया उन लोगों में उनकी पर्सनैलिटी क्या पसंद करती है, क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, अब उनको क्या पसंद होता है। वो सफाई और खुशबू पसंद करते हैं, मतलब आपने अच्छा परफ्यूम वगैरह लगाया हो, साइलेंस, खामोशी, ऑर्गेनाइज्ड एंड सॉफ्ट म्यूज़िक, और सिंपल किस्म की ड्रेसिंग और नेचुरल लाइट उन लोगों को काफ़ी पसंद है, ऑनेस्टी पसंद है, और नापसंद क्या करते हैं, झूठ। वो तो खैर सारे ही नापसंद करते हैं, चाहे बोलते सारे हों लेकिन सुनना पसंद कोई नहीं करता,
2: पसंद कोई नहीं करता।
1: शोर शराबा भी कोई नहीं पसंद करता, और बेतरतीबी भी नहीं पसंद करते, लेकिन यंग एज में मेरा ख्याल है बॉयज होते ही बेतरतीब हैं। अगर आप कमरे में जाएं, अगर अलग कमरा है तो फिर आपको बेतरतीबी लाजमी मिलेगी। टॉक्सिक किस्म के लोग इनको पसंद नहीं है, फेक पर्सनैलिटीज बिहेवियर, लाउड बिहेवियर और मैनिपुलेटर भी इनको पसंद नहीं होते।

0: और इनके बारे में एक और चीज भी होती है, जल्दी से मोहब्बत नहीं करते, इट टेक्स टाइम ऑलवेज, फौरन से ऐसे नहीं है कि आप कहें कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं तो मान ले और आपकी बातों में आ जाए। इसके अलावा और एक बार अगर ट्रस्ट कर ले तो फिर लॉयल होते हैं और इमोशनल सिक्योरिटी ये चाहते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और रिस्पेक्ट लेना पसंद करते हैं। अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें कि कंपैटिबिलिटी इनकी किसके साथ कैसी होती है, वाइट कलर पसंद करने वाले जो ब्लू कलर लवर्स होते हैं उनके साथ इनकी कंपैटिबिलिटी 95% होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इनका ट्रस्ट लेवल स्टेबिलिटी और अच्छा रहता है। और ग्रीन के साथ इनकी 91% कंपैटिबिलिटी है, हेल्दी रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, कभी कभी एक्साइटमेंट कम हो जाती है, इशू आता है। और वाइट विद पिंक 90% कंपैटिबिलिटी है। ये जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑल दीज फैक्ट्स आर बेस्ड ऑन रिसर्च, ठीक है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, हर्फ आखिर नहीं है। तो इनके 90% पिंक के साथ है, रोमांटिक किस्म का कपल बनता है, काइंडनेस एंड इमोशनल सपोर्ट होती है दोनों, लेकिन जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। पिंक के बारे में तो वैसे ही बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट किस्म के लोग होते हैं। और ब्लैक के साथ इनकी परसेंटेज कंपैटिबिलिटी की 88% होती है। वाइट सुकून देता है और ब्लैक जो है बड़ी कॉन्फिडेंट किस्म की पर्सनैलिटीज होती हैं। और इश्यूज जो होती हैं ब्लैक जरा जल्दी से ओपन अप नहीं होते, रिजर्व रहते हैं, और वाइट जो हैं जब रिलेशनशिप में आते हैं ओपननेस काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। पर्पल के साथ 84% है, क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल किस्म का पेयर बनता है ये दोनों का, डीप कन्वर्सेशन करने वाले। और पर्पल की इमेजिनेशन जो होती है वो वाइट का जो प्रैक्टिकल किस्म का इम्पैक्ट है उससे टकराव में आ जाता है कभी कभी। एंड इफ यू टॉक अबाउट ब्राउन के साथ तो 83% ट्रस्ट स्टेबिलिटी, अच्छा इनका बॉन्ड बनता है, फैमिली ओरिएंटेड किस्म का कपल बनता है। जिंदगी में कभी कभी अजीब सा अनप्रिडिक्टेड किस्म का बिहेवियर भी हो जाता है। और अगर बात करें हम ग्रे के साथ तो इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाती है और ये भी 80% तक ही कंपैटिबिलिटी होती है। इमोशनल एक्सप्रेशन का फुकदान कभी कभी आ जाता है और इस दौरान शाहजेब का मैसेज आया हुआ है, वो बड़ा पसंद कर रहे हैं आपके गानों।
1: बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब।
0: कैमरा आपकी तरफ ही रखा हुआ है ताकि दुनिया आपको देखती रहे जी। फिर उसके बाद बड़े बड़े स्टेज पे देखेंगे ना, कहेंगे हाँ हमने पहले देखा
1: था,
0: वहां पे आया था, अब देखो माशाल्लाह एंड इंशाल्लाह। येलो के साथ बात करें तो 76% कंपैटिबिलिटी है और अच्छा पेयर बनता है और आपस में पॉजिटिवली रहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी जो है ना वो कभी कभी फेड होती है दोनों की आपस में। और इसी तरह से गोल्डन और ऑरेंज के साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी 70% है, अच्छे एम्बिशियस किस्म का कपल बनता है। ऑरेंज के साथ जो है ना फन लविंग होता है, ऑरेंज के साथ इनका अच्छा बन जाता है। और रेड के साथ जो है कंपैटिबिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, क्योंकि रेड जो होते हैं वो रिएक्शन बड़ी जल्दी देते हैं, बड़ा अग्रेसिव किस्म के, और वाइट के साथ और वाइट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन गैप बन जाता है,
1: गैप बन जाता है
0: और उसकी वजह से ये इश्यूज आ जाते हैं।
1: इंट्रोवर्ट होता है वाइट,
0: इंट्रोवर्ट होता है, बिल्कुल यू आर राइट। यू लव वाइट कलर?
1: आई लाइक वाइट विद रिस्पेक्ट टू द ड्रेसिंग, ड्रेस करना तो मुझे पसंद है, बट
0: वैसे कौन सा कलर पसंद है?
1: वैसे मुझे मैरून कलर, थोड़ा
0: मैरून कलर
1: जी मुझे पसंद है।
0: ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा जी अगला सवाल मोहसिन,
1: अगला सवाल से पहले कॉल लेते हैं ना,
0: पहले कॉल पे पूछे?
1: हाँ जी कॉल पे,
0: पक्की बात है,
1: पक्की बात है।
0: अच्छा मैडम सलमा ने भी मैसेज करके आंसर दिया था, लेकिन मैडम यहाँ पे कॉल पे हम आंसर लेते हैं, आपको पता ही है, इसके लिए माजत। रहमान भाई आप सोचते हो तो आपको भी पता होगा कि कितना मासूम है जी, हमें तो नहीं पता जी, राजा काशिफ वो पहले कितने मासूम थे। अच्छा उस गाने पे आपने कमेंट किया?
1: अच्छा अच्छा चल
0: हमें तो नहीं पता,
1: हम परेशान हो गए।
0: मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, वो बात कह रहे हैं आपको ही पता होगा कितने मासूम थे और क्या से क्या हो गए।
1: सोचता हूं
0: ये तो पर्सनल किस्म की बात है, वो आपको क्यों बताए। सर ये वाइट कलर है, वाइट क्या है, वाइट कलर है उसकी साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं हम। आई एम गोना टेक अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई।
1: अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे भी है कि हमारी ऑडियंस के दिल में भी एक क्वेश्चन आता होगा कि जो आरजे डॉग्स हैं उनका कौन सा फेवरेट कलर है और वो कौन सा पसंद करते हैं कलर।
0: वैसे अब एज के साथ साथ बदल जाते हैं ना, आपकी चॉइसेस चेंज हो रही होती हैं और कभी कभी सिचुएशंस भी आपको बदल रही होती
1: जी, ऐसे
0: जैसे बिल्कुल आपको कभी उम्र के एक हिस्से में कोई खाना कुछ पसंद होता है फिर उसके बाद आप बदल जाते हैं, इसी तरह से डिफरेंट हो जाता है एज के साथ। किसी दौर में मुझे ब्लू था पसंद, फिर उसके बाद ब्लैक तो यूनिवर्सल सा है, ब्लैक तो अपील करता ही करता है। ब्लैक के साथ, ब्लैक तो खैर मेरी टॉप प्रायोरिटी पे है, अगर आप पूछें कि एक कलर ब्लैक है पसंद करता हूँ उसके साथ वाइट आई लव
1: वाइट,
0: ऑफ कोर्स वाइट। सो इट डिपेंड्स कि आप किस मूड पे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं,
1: मूड पे चल रहे
0: हैं तो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: कौन है हमारे साथ?
2: वकास बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं वकास आप?
2: अल्लाह का शुक्र, खैरियत, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह फाइन।
2: क्या मैं लाइव हूँ इस टाइम?
0: जी बिल्कुल आप लाइव हैं।
2: अच्छा, मुझे थोड़ा टाइम पहले ना, कोई पौना घंटा घंटा पहले एक गजल किसी साहब ने पढ़ी थी, कोई पोएट्री पढ़ रहे थे।
0: हाँ जी।
2: तो उसको मैं अगर रिपीट सुनना चाहूँ तो मुझे क्या तरीका करना पड़ेगा, जिसमें कुछ जुमला था इस तरह का कि तकसीम करते
0: वो जो उन्होंने तकसीम पे बात की और फिर उसके बाद उन्होंने
1: कॉलोनी ज्वाइन किया था।
0: हाँ हाँ हाँ ये मेरी लाइव स्ट्रीम है, अगर वहाँ पे आप देखेंगे
1: फेसबुक पे, आप
0: तो फेसबुक पे सर्च करें आरजे स्पेस डी ओ एक्स डॉक्स,
1: आरजे डॉक्स लाइव सर्च करें
0: तो वहाँ पे आपको उसमें से। हाँ जी
2: ओके, आरजे डी ओ एक्स फॉर डॉक्टर, यू नो।
0: या
2: फाइन, और थैंक यू सो मच, मैं उसको दोबारा सर्च कर लेता हूँ। लेकिन इसके अलावा कोई मेरे पास ऑप्शन ऐसी कि जिसमें वो पोएट्री में ले सकता हूँ?
0: मैं कोशिश करूंगा, वो साहब अगर सुनते हो उन्हें मैं कहूंगा कि मैसेज कर दें, और अगर वो मैसेज करें तो उसको बिल्कुल अपने पेज पे मैं डिस्प्ले कर दूंगा।
2: जी बिल्कुल, अपने पेज पे डिस्प्ले कीजिएगा, मैं सर्च करता हूँ पेज आपका। मुझे पोएट्री बहुत पसंद आई थी, और स्पेशली आपके साथ जो गेस्ट आए हुए हैं मेरी तरफ से उनको भी बहुत सलाम, और बहुत अच्छी उन्होंने अच्छे सुर लगाते हैं और अच्छी सिंगिंग करते हैं।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
2: आपने अच्छे गेस्ट रखे। बारे में आपका कुछ क्वेश्चन, आप जो मैनिपुलेट कर रहे थे मैं वो भी सुन रहा था।
0: आपसे सवाल पूछते
2: था मेरे पास,
0: आपसे सवाल पूछते जी मोहसिन, क्वेश्चन करें।
2: क्वेश्चन कर ले बट मैं पहले बता देता हूँ मेरे से आंसर नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आप
0: क्या पता, हु नोस। चले हम आप स्टॉपवॉच चलाएंगे,
2: आसान सा क्वेश्चन पूछ ले,
0: पूछे
3: आसान सा पूछूं कि
0: नहीं? नहीं आप सवाल पूछें, आप सवाल करें।
3: ओके, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क पाकिस्तान में किसी ने बनाया?
2: अब्दुल सत्तार रेड्डी।
0: ये क्या सवाल पूछा तूने?
2: देखिए मैंने आसान सा आसान पूछ लिया,
0: उसने वाकई आसान,
3: वाकई सर मैंने आसान ही पूछा,
2: बहुत आसान पूछ लिया, इसमें कोई शक नहीं। अब बात, आपने मेरी रिक्वेस्ट पे अमल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आप लाइन पे रहिएगा जी विकास भाई, लाइन पे रुकिएगा हमारे साथ, प्लीज लाइन पे रुकिएगा।
2: श्योर
0: श्योर। ये मोहसिन ने बूटी करा दी है, मोहसिन ने आसान बहुत आसान सवाल पूछ लिया। अच्छा जी, मैं मैसेजेस को शामिल करता हूँ जी हमारी पोस्ट पे, जो मैसेजेस हैं वो शामिल करते हैं और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम। ओके, इस्लामाबाद वाली पोस्ट है जी, वहाँ से मैसेजेस देखते हैं। मरीना बिलाल ने वहाँ पे मैसेज किया, सलाम किया, थैंक यू वेरी मच। सजाद अली लाडला ने सलाम किया, और बिल्कुल मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वेलकम किया आपने गेस्ट को भी, मुझे भी, थैंक यू वेरी मच। महाजबीन ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। चेन्नई सिंगर इंजॉय कर रहे हैं, आप कहाँ से सुन रहे हैं, आप कहाँ से? हाँ तमिलनाडु। ओके, आप यकीनन आपको पसंद आया होगा जी रहमान का गाना, आप क्योंकि खुद भी एक सिंगर हैं और आपकी डीपी भी बता रही है, एंड माय बेस्ट विशेस फॉर यू। हुमैरा हैं और लिख रही हैं अब्दुल रहमान जीते रहो,
1: बहुत शुक्रिया आपका हुमैरा,
0: थैंक यू वेरी मच। सजाद अली लाडला तमाम समातों को सलाम, वालेकुम सलाम। नज़ीर खोसो के फाइन, एंड उसके अलावा माज़ अली ने मैसेज किया, जनाब अली प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, माज़ अली पिशावर से, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग जी माज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। एंड ओके हम आगे बढ़ते हैं, मैसेजेस शामिल कर लूँ फिर बाद में गिरा था आपने मैसेज शामिल नहीं किया जी। आज के दो विनर हो गए, एक तो हो गई मैडम अनीला और एक हो गए वकास साहब जिन्होंने अभी इमोशन ने बहुत आसान सवाल पूछे बहुत ही यार इतना आसान ये तुम्हारे जानने वाले तो नहीं थे
3: हैं? बस ये नहीं सर मेरे जानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे।
0: नहीं नहीं मुझे लग रहा है कुछ चक्कर है क्यों रहमान ऐसा कुछ है
1: महसूस मुझे हुआ है कि
3: अल्लाह की दफा भी यही कहा गया है कि मैंने बूटी बुलाई है।
0: हाँ तो यही किया
1: तुमने लेकिन इस दफा आपने थोड़ा सा किया
0: आशिक खास खिली साहब हैं थैंक यू वेरी मच सलाम किया वालेकुम सलाम आपको भी वेलकम किया सलाम किया रहमान कवल नाज है यहाँ पे भी आई बरकत जमाली साहब हैं आपका भी मैसेज आया थैंक यू वेरी मच और चीकू मुगल सलाम किया वालेकुम सलाम सब सुनने वालों को सलाम ओके आपको यार सारे पसंद कर रहे हैं बहुत अच्छा गा रहे हो माशाल्लाह मलिक वसीम अवान है माशाल्लाह बहुत उमदा प्रोग्राम थैंक यू वेरी मच जी बहुत शुक्रिया। साद पाशा गुजराती सलाम किया वालेकुम अस्सलाम जी आई होप डूइंग वेल यस ऑफ कोर्स आई एम वेल थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग ओके हर दिल फरेब चीज नजर का गुबार है कहीं हसीन हूँ तो कहीं खिजा भी बहार है वाह वाह बहुत अच्छा है जी मोहब्बत खुद मोहब्बत का सिला है आरफी लेकिन कोई आसान है क्या न्याज़े मदा होना न्याज़े मुद्दा होना अच्छा क्या बात है मुश्किल शायरी पढ़ती हैं आप गिर रहा है मिसरा तो गिरने दो उठ रही है देखिए गजल कैसी अच्छा ठीक हो गया वसीम अवान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी एंड थैंक यू वेरी मच आप सबका मैसेजेस का लाइफ इज प्लान्ड बिल्कुल ऐसी है लाइफ इज प्लान्ड जी सलाम किया आपने वालेकुम अस्सलाम अभी हम पूछते हैं रहमान से रहमान फिर अब लाइफ में आप क्या आगे करना चाहते हो व्हाट आर योर प्लान्स
1: मैं इसी को एज अ कैरियर परसू करना चाहता हूँ म्यूज़िक को क्योंकि एक बहुत एक आर्ट है और ये आर्ट जो है ये ऐसी आर्ट है जिसकी जिसका बॉर्डर कोई नहीं है इट्स अ बॉर्डरलेस आर्ट अभी आपने भी देखा कि तमिलनाडु से हमें लिस्टनर्स ने ज्वाइन किया इट शोज़ द फैक्ट दैट आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज
0: एग्जैक्टली
1: लोग पसंद कर रहे हैं हमारी आर्ट को
0: बिल्कुल
1: हमारी फनकारी को आपका एक आर्ट है तरीका है जो लोगों को भाता है इसी तरह ये म्यूज़िक भी मेरे अंदर एक चीज़ थी और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं आगे भी लोगों में डिसिमिनेट करूँ
0: बिल्कुल ठीक है
1: प्रोपगेट ना करूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया जी, जी। और यहाँ पे जब आप आए
1: जी जी
0: तो आप तो सिंगर हो
1: जी जी
0: तो आपने क्या सोचा ये जो इंटर्नशिप आपने ज्वाइन
1: जी जी
0: तो सिंगिंग एंटायरली डिफरेंट फील्ड है और
1: बिल्कुल ऐसे ही है एक जो यहाँ पर इंटर्नशिप हो रही रेडियो पाकिस्तान में दैट इज विद रिगार्ड्स टू इम्प्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स लेकिन सिंगिंग एक अलग चीज़ है ये बहुत अलग चीज़ है
0: बिल्कुल
1: बट मैं कम्युनिकेशन को एक ऐसा मीडियम समझता हूँ कि जिसको कम्युनिकेशन किसी से बात करना किसी को मुतासिर करना नहीं आता वो आज की इस दुनिया में मेरी नज़र में नाकाम आदमी है
0: बिल्कुल सही
1: तो किसी से बात करना भी एक फ़न है अब आपने 2 घंटे का शो किया है आपके सामने बोर नहीं हो रहे वो बोर नहीं हो रहे वो चेंज नहीं कर रहे चैनल
0: ये बता नहीं पाते
1: वो आपका एक तरीका है जिस तरह एंगेज आपने किया हुआ लिसनर्स को तो दिस इज द थिंग विच मैटर्स और इसी वजह से मैं आया
0: ओके ओके तो आप चाहते हो इसके साथ साथ आप अच्छा कम्युनिकेट भी करो
1: जी जी
0: पता है जरूरी नहीं होता कि हर आर्टिस्ट जो है वो अच्छा कम्युनिकेटर भी हो हर सिंगर अच्छा कम्युनिकेटर भी हो बड़े कम होते हैं
1: बिल्कुल ऐसे ही
0: जो बड़े अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं यू कैन काउंट देम ना कि यार ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर
1: हैं और ऐसी एग्जांपल्स भी हैं कि बहुत अच्छे फनकार थे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कम्युनिकेशन गैप की वजह से उनको उस तरह से चांस नहीं मिला परफॉर्म करने का
0: या वो शायलेस होती है उन्हें
1: शायलेस होती है या फिर वो थोड़ा सा
0: इवन बहुत बड़े बड़े नाम है
1: ऐसे ही है
0: सिंगिंग में इतने बड़े बड़े नाम है लेकिन कम्युनिकेशन एंटायरली एक
1: डिफरेंट फील्ड है
0: तो जिस तरह से इस दफा आप लोगों को हमने वो प्रैक्टिस भी करवाई आपके सामने वो चलाया भी या मोहिद्दीन साहब का
1: बिल्कुल बिल्कुल ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं और स्पेशली मुझे लगा कि अगर हम ज्वाइन करेंगे इट विल बी अ नॉर्मल इंटर्नशिप इसमें कोई इतना एक इंडिविजुअल लेवल पे हर एक लड़के को लड़की को जो आ रहे हैं उनको लुक आफ्टर नहीं किया जाएगा बट जिस तरह से आउट ऑफ द वे आप लोग मैसेज करते हैं, इनको पूछते हैं, दैट इज बिट डिफरेंट थिंग.
0: कोशिश कर रहे हैं,
3: कोशिश कर
0: सारों को इंगेज करें, यहाँ पे आए हैं, कुछ सीख के जाएं.
1: अगर जो भी हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में हैं वो कुछ भी बनेंगे फ्यूचर में, तो उसका अवार्ड और रिवॉर्ड आपको भी जाता है और तमाम इंस्ट्रक्टर्स को जो इसमें इस प्रोग्राम में.
0: बिल्कुल ऐसी पूरी मैनेजमेंट है जी, हमारी पूरी मैनेजमेंट इसमें शामिल है.
1: बिल्कुल ऐसे
0: ही. एक कॉल लेते हैं. हेलो हेलो हेलो हेलो
4: सर,
0: अस्सलाम वालेकुम.
4: कैसे हो सर, आप ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएं.
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. बहुत टाइम बाद आपसे बात हो रही है सर. दौछा बात कर रहा हूँ पिशावर से.
0: क्या हाल है शाह साहब, आप ठीक हैं? खैरियत से है
4: अल्हम्दुलिल्लाह सर. बस मुहर्रम था बीच में, फिर आप गायब हो गए, फिर मैं भी मसरूफ था, थोड़ा सा बीमार भी था. अभी तो मैंने ऐसी कॉल मिला दी, मैंने कहा किस्मत की बात है, क्या बात है, हो सकता है कि सर से बात हो जाए.
0: देखे आपकी मेरी बात हो गई
4: जी सर. आओ आप ठीक हो, तबीयत ठीक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप बताएं. चलो ये शाह साहब का यही मसला है, शाह साहब
3: भी कॉल करते हैं उनकी कॉल डिस्कनेक्ट
0: कर देती है. हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
5: हेलो अस्सलाम वालेकुम सर.
0: वालेकुम अस्सलाम
5: सर. कयूम खान बात कर रहा हूँ पेशावर से.
0: कैसे हैं आप खान साहब?
5: अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत प्यारा प्रोग्राम चल रहा है
0: सर. बड़ी मेहरबानी, आप पसंद करते हैं, आप सुनते हैं.
5: और दूसरा जो आए हुए नाकर साहब, उसको भी दुआ सलाम.
0: आपने गाना सुना?
5: बिल्कुल सर.
0: कैसा लगा
5: प्रोग्राम सुन रहा हूँ? बहुत प्यारा प्रोग्राम,
0: बहुत प्यारा गाया है ना,
5: बहुत प्यारा.
0: जल्दी आपने देखना, फ्यूचर में आपको टीवी पे भी कहीं ना कहीं बड़े स्क्रीन में बड़ी बड़ी जगह पे नजर आएंगे.
1: बहुत शुक्रिया
5: आपको, दुआ सलाम साहब.
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैसे खामोश रहते हैं, और आज आपकी आवाज़ सुन के ना मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है. एक बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं भालू माई का गाना चला दे. अच्छा वो देखते हैं भाई, देखते हैं आकाश, देखते हैं. लेकिन एंड पे मैंने गाना वही चलाना है जो हमारे फौजी भाई ने रिक्वेस्ट किया, हवा हवा वाला, वो गाना चलाएंगे. और फिज़ा ने कहा गुलों में रंग भरे, अब वो सुना दिया है ना, अब हम कोई और सुनेंगे एंड पे, और उसमें आगे हम चलेंगे प्रोग्राम मुकम्मल करते हुए. शो के स्टार्टिंग में रिक्वेस्ट की थी. अच्छा थोड़ा सा आप गुलों में रंग भरे गुनगुनाएंगे थोड़ा सा?
1: चलें थोड़ी सी एक लाइन सुना देता हूँ. बैकग्राउंड म्यूजिक.

0: गुलों में रंग भरे बादिनों बहार चले। बहुत शुक्रिया,
1: बहुत
2: जबरदस्त, बहुत अच्छा,
1: जबरदस्त। अभी यहाँ पे वक्त हो चुका है 11:52 और विनर हमारे आ चुके हैं, हमने बात भी कर ली। रहमान मैसेज आया, पता नहीं कौन है, बाहर मज़ेदार मैसेज है। रहमान भाई बात करते करते ऐसे शर्माते हैं जैसे लड़की वाले उनका रिश्ता देखने वाले।
0: बिल्कुल रिलेटेबल जोक है।
1: हेलो
0: और अच्छा, क्योंकि आवाज से काफी कुछ देखे उन्होंने, जज कर लिया।
1: अच्छा जी, इसके अलावा जी जासिर आए हैं श्रीनगर कश्मीर से, सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच जासिर। आज आप लेट हो गए, काफ़ी लेट हो गए, आपने पहले ज्वाइन क्यों नहीं किया। जिस तरह कोई पोइट्री करता हो तो मेरा दिल करता है मैं पोइट्री करूं, और आज इस भाई की सिंगिंग करते देख कर सुन रहा हूं और दिल करता है मैं भी सुनाऊं कुछ आके। आप क्या सुनाएंगे पहले ये भी बताएं मुझे। कॉल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम।
3: अस्सलामुअलैकुम।
1: अस्सलामुअलैकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
3: ठीक ठाक, ये परफेक्ट आपके ऊपर है।
1: अच्छा,
3: मासूम थे।
1: अच्छा,
3: जब रेडियो स्टार्ट किया था, अब क्या से क्या हो गए,
1: क्या से क्या हो गए। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम, बिल्कुल ठीक कह रही है। आप खैरियत से?
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कॉल तो मिलती नहीं है, मैंने तो सबसे पहले एक मिनट के अंदर आंसर दे दिया था।
1: मैडम लेकिन आपको आंसर मिल भी जाता ना, अब मैंने आपको ये नहीं था कहना कि अब मैं आपको 1000 रुपए का कंपनी से लूट लेके भेजूंगा।
3: लिख रहा था पर मैंने कहा चलो छोड़ा, कुछ जो उन्होंने पूछा नहीं तो मैं नहीं देती जवाब।
1: जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बताता हूँ, मैडम सलमा है, और मैडम सलमा जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तब से मैडम के साथ, हाँ तब से जो है फर्स्ट डे से मैडम साथ हैं, गाइड करती हैं, कोई क्वेश्चन रखूँ उसमें इनकी इनपुट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है, वैल्यूएबल होती है, हमेशा उसको डायरेक्शन देती हैं, मौजू को खोलती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए तो एटलीस्ट। और वो याम जहाँ 3 घंटे में बोलता था वहाँ पे मुझे चाहिए होता था कोई ना कोई जो है ना डायरेक्शन सेट
4: होती है,
1: और मैडम आके डायरेक्शन सेट कर देती थी और डिस्कशन फिर चलती रहती थी।
0: पायनियर लिसनर है इसका मतलब।
1: हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। मैडम कैसी हैं, वापस आ गई हैं या वहीं पे हैं मरी में?
3: नहीं नहीं लाहौर में, लाहौर
1: आ गई हैं।
3: मानसून शुरू हो गए अब तो, घर लाहौर ही रहना।
1: बिल्कुल ऐसे,
3: मानसून के बाद फिर जाना होगा।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैडम क्या कहना चाहेंगी आज आपने सुना रहमान को?
3: रहमान की बहुत माशाल्लाह खूबसूरत आवाज है,
1: है ना,
3: और उसके लिए यही है कि बस ये रियाज करता रहे।
0: बिल्कुल,
3: बहुत
0: शुक्रिया।
3: बहुत अच्छे माशाल्लाह बच्चे, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अल्लाह ने आपने ब्लेसिंग की है, और आपने बहुत रियाज करना
0: है,
3: यही है म्यूजिक में, रियाज करो और
0: जितना
3: रियाज करोगे उतना तरक्की करोगे।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत
1: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एनीथिंग एल्स मैडम, आपके अल्फाज तो गाइडेंस की तरह से ही होते हैं, इसीलिए मैंने कहा आप जरूर बताइए।
3: मैंने कहा आपको बताऊंगी, बहुत अच्छा शो है, और इसी तरह इंकरेज करें यंग आर्टिस्ट को, नए लोगों को, ताकि वो भी फील्ड में आए और हमें नए नए लोगों की आवाजें सुनने को मिले।
1: थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह जीनिया हकीम ने ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। और कहती है वाकई डॉग सर स्टार्ट में बड़े शरीफ थे, अब शरारती हो गए। यार ये किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हो, सारा अली जई आई है, सर ये लड़का इतना हैंडसम क्यों है, जासर सरगार श्रीनगर कश्मीर से कह रहे हैं, है ना, अच्छा है ना, माशाल्लाह। उन फिर शर्माना शुरू कर दे, शर्माना शुरू कर देगा। अब हम ऐसा करते हैं اب ہم مکمل کریں گے. آپ نے گانا ہے, ذیشان ناصر آ رہے ہوں گے, ان کا شو ہے اسلام آباد سے, اور ذیشان بھائی ضرور سن رہے ہوں گے. اینڈ بڈی اگلے ویک تو آپ یہیں پہ ہوگے, وینسڈے کو یہاں آنا ہی ہے لاہور میں, تو میرا خیال ہے اس دن ہم ایک کمبائن شو کر بھی لیں. تو ذیشان آپ نے, میرے بھائی نے جب ادھر آنا ہے تو پھر اسی طرح پھر اگر آپ نے سیم ڈے واپسی کرنی ہوئی تو پھر آپ رات کی ٹکٹ کرنا تاکہ رات کو ہم ایک کمبائن شو بھی کر لیں. بڑے لوگ میسج کرتے ہیں, سو آئی وانٹ ٹو ڈو دیٹ اگین. اینڈ نایاب ناصر نے کہا امیزنگ وائس, گریٹ شو, بہت پسند کیا ہے ساروں نے. اب ایسا کرتے ہیں, آپ کون سا گانا گاؤ گے؟
0: ابھی انہوں نے سجاد علی کا ذکر کیا ہے تو ان کی ہی غزل ہے, لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں.
1: اب اس میں یہ کریں گے ہم تھوڑا سا, آپ اس میں گاؤ گے دو لائنیں, اس کے درمیان میں میں دو اشعار بولوں گا, پھر آگے آپ گاؤ گے.
0: بالکل ایسا,
2: ایسا کیا کمبینیشن ہے.
4: لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں, لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں, تیرے جیسا کوئی ہم کو ملا نہیں.
1: گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر, تقدیر میں جو لکھا نہیں اس کی فریاد نہ کر, جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا, تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی کو برباد نہ کر.
0: کیا بات ہے,
4: زمانے بھر کی باتیں ان سے کہہ دیں, زمانے بھر کی باتیں ان سے کہہ دیں, جو کہنا چاہیے تھا وہ کہاں نہیں, جو کہنا چاہیے تھا وہ کہاں نہیں.
1: میرا سوچنا تیری ذات تک, میری گفتگو تیری بات تک, میرا سوچنا فقط تیری ذات تک.
4: لگایا دل بہت پر دل لگا نہیں,
1: کبھی فرصتیں جو ملے تو آ میری زندگی کے حصار تک, میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں تیرے پہلے تیرے بعد تک.
0: کیا بات ہے,
1: تھینک یو ویری مچ ایوری ون, تھینک یو ویری مچ عبد الرحمان, بہت اچھا لگا, آئی لو دیٹ, اور مزہ آیا مجھے, اور آئی ہوپ مائی بیسٹ وشز فار یو, میری بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے, میری نہیں تمام سننے والوں کی بہت ساری دعائیں ہیں, اور انشاءاللہ میں فیوچر میں آپ کو کسی اچھی جگہ پہ لے,
0: انشاءاللہ
1: یو گنا راکٹ, انشاءاللہ جہاں ہماری ضرورت پڑے وی آر آلویز.
0: تھینک یو ویری مچ سر, تھینک یو,
1: اپنا بہت سارا خیال رکھیں جی, ٹیک کیئر, بائے بائے ایوری ون, اللہ حافظ.

मोहम्मद मुनीब कह रहे हैं कि सर वन साइडेड लव पर भी बात करें। मुनीब वही हुआ ना जिसका डर था मेरे भाई। मुझे पता है कि तू नमल यूनिवर्सिटी पढ़ने आया है, माशाल्लाह हैंडसम भी है, हॉस्टलाइट भी है, हो गया ना वही काम जिसका मुझे डर था। फंस गए हो ना चक्कर में, फंस गए हो ना मोहब्बतों के चक्कर में। मेरे भाई डिग्री मुकम्मल कर, पैसा कमा, एंजॉय द लाइफ कर। देख मेरे भाई, आजकल का जो दौर है ना, ये वो दौर नहीं है मेरी जान। सस्सी पुन्नू अच्छे लगते हैं सुनने की हद तक। आज चल इसके ऊपर शेर सुनाता हूँ मैं अपने भाई को। कहता है कि मेरी दाढ़ी लांदी वेख के मेरे प्यू मैनू कसम चुकाई है काबे दी। ऐसे नहीं मुनीब, तेरे लिए शायरी पढ़ना है यार। वन साइडेड लव पे भी बात करते हैं, पहले सुन यार, कब पढ़ूंगा कब सुनोगे यार। कहता है मेरी दाढ़ी लांदी वेख के मैनू कसम चुकाई है मेरे बाबे काबे दी, मेरा पुत्र जवानी जालिम है, हुण अपनी चिंता डेर करी। मेरी दाढ़ी लांदी वेख के है, कहता है कि जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई, मैं जवान होना शुरू हुआ, तो मेरे बाप ने मुझे काबे की कसम उठवा के कहा कि मेरा पुत्र जवानी जालम है, हुण अपनी चिंता ढेर करी। इतना हीर कहीं नहीं, इतने रांझे कहीं नहीं, तेनू मिठियां चूरियां के लबसन, इत गुरदा हीर कहीं नहीं, इत रांझे कहीं नहीं।

कि आप उसके साथ जिंदगी गुजार सकते हो तो उसको बता दो मैक्सिमम क्या होगा, ना हो जाएगी तो कम से कम आपका फायदा ये होगा कि आप वन साइडेड से बाहर निकल आओगे। क्योंकि इंसान पर सारी जिंदगी ये सोचता है यार काश मैं बता देता तो हो जाता। ये जो काश है ना जिंदगी में यार कुछ भी कर लेना, मैं कहता हूं 10 काम करना 10 के 10 में हार लेना, जिंदगी में बिजनेस शुरू करो हार जाओ, जिंदगी में कुछ भी करो हार जाओ, हार जीत जिंदगी का हिस्सा है, कुछ भी कर लेना हार हार हार हार इकट्ठी करते रहना, जीत हार जिंदगी में चलती रहती है। लेकिन जिंदगी में एक चीज कभी अपने साथ ना रखना और वो है काश। जो करना चाहते हो कर गुजरो।

0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? जनाब कौन है? जी जी
1: कैसे हैं आप?
0: करम अल्लाह का, सॉरी यार मेरे माइक नहीं। हाँ जी,
1: मैं बिस्मा लाहौर से बात कर रही हूँ।
0: बिस्मा क्या हाल है?
1: मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप अभी बातें कर रहे थे, ये क्या नाम था इस सस्ती फोनों वाली?
0: हाँ हाँ, वही वही वही, तुम तो इंग्लैंड से आई हो ना,
1: बातें नहीं करनी चाहिए जनसी के सामने।
0: अच्छा, क्यों
1: ऐसी बातें कर रहे हैं आप?
0: क्यों, गलत बात
1: है? समझा, उसके बाद साथ ही आपने फिर वो मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना स्टार्ट कर दी ना, मीन्स एक मैसेज एक भाई ने किया, उससे आपने रिप्लाई किया, अच्छा किया कि नहीं। आजकल के दौर में भाई ये बातें सिर्फ ये इस तरह की जो स्टोरी है, ये कहानी अच्छी लगती है, बस उसको बस सुनो, एंजॉय करो।
0: इसीलिए हमने आपकी, इसीलिए नाम क्या है, अगर मैं जान
1: सकता
0: हूँ। सही बात है। अब बाजी नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम?
0: हाँ हाँ, आपका नाम
1: मैंने आपको बताया तो है, बिस्मा।
0: अच्छा बिस्मा, सॉरी वो एक्चुअली डिस्टॉर्शन थी, मैं सुन नहीं सका। बिस्मा जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही होंगी, आप जिस तरह सोच रही हैं, लेकिन ये मुनीब भाई वन साइडेड लव के बारे में, चलें फिर आप गाइड कर दें प्लीज, मैं हम सुन रहे हैं सारे, प्लीज गाइड कीजिए।
1: क्या गाइड करूं?
0: वो मतलब कह रहे हैं कि वन साइडेड लव के ऊपर बात करें, उनको बहुत जोर का सिंगल साइडेड का लव हो गया।
1: अच्छा
0: जी,
1: बस ये वन साइडेड लव जो है वो अच्छी चीज नहीं, अच्छी भी है तो अगर आपको वन साइडेड हो गया तो फिर अपने हद तक रखो, अगर आप नहीं कह सकते तो फिर रखो, एंजॉय करो।
0: नहीं तो वो कैसे,
1: और अगर आप हौसला करते हो बता दो।
0: बिस्मा बाजी, नहीं नहीं,
1: हजरत अली रजी अल्लाह की बात करूँ तो उन्होंने भी ये फरमाया था कि जब आपको मतलब आप अजहार करो, बताओ,
0: अच्छा
1: बताना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, बिस्मा बाजी नहीं, बात ये है कि वो कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती, वो शर्म कैसे दूर करे, वो ये पूछना चाह रहा है एक्चुअली बाजी।
1: शर्म आती है?
0: हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं बता नहीं पाता, मुझे शर्म आती है, ऐसे ही है ना मुनीब? हाँ ये ऐसे कह रहे हैं। हाँ ऐसे ही, शर्म आती है।
1: शर्म आती है तो फिर बस ठीक है, चुप करके बैठे, आपको बताते हैं, इसको शर्म नहीं आ रही।
0: हाँ यार, ये तो बात वाकई मैंने सोची नहीं बिस्मा बाजी, वाकई आप बात ठीक करिए, मुझे बताते हुए शर्म नहीं आ रही, उसको बताते हुए शर्म आ रही है।
1: पूरे रेडियो पाकिस्तान को बता रहा है, आपको नहीं बता रहा, हम भी तो सुन रहे हैं इस भाई की बात।
0: बाजी वैसे मजाक नहीं कर रहा, कसम से आपने बहुत अकलमंदाना बात की। वो ऐसे ही है जैसे ना, एक दफा मैं एक व्लॉग देख रहा था तो उसमें वो एक खातून कहती हैं कि भाई मैं हिजाब करती हूँ, मैंने अगर हेयर कलर अपना करवाया है तो मैं हिजाब करती हूँ और मैं सिर्फ अपने महरम को दिखाती हूँ। तो वो
1: अच्छा।
0: मैंने देखा कि वो वीडियो में नजर आ रहे थे, तो मैं यही सोच रहा था कि वो जितने देख रहे हैं ये तो सारे गैर महरम देख रहे होंगे। मैं जरा मुनीब से पूछता हूँ, बाजी आप रुके, आप सही कह रही हैं, आप तो बड़ा हमें, मुनीब भाई जल्दी से जवाब दें इनको, रुके मुनीब भाई। हाँ वो
1: अच्छा भाई, मैं इधर ही हूँ।
0: हाँ अच्छा, नहीं बिस्मा बाजी,
1: बैलेंस खत्म होने लगा, फिर मैंने गायब हो जाए,
0: क्या बात हुई बिस्मा बाजी,
1: इसी को जल्दी रिप्लाई करे आपको, फिर मैं इसको बताती
0: अच्छा,
1: हूं क्या करना।
0: आ गया मैसेज आ गया। वो कह रहे हैं कि बिस्मा बाजी से कहें कि मुझे ऐसी टिप देना कि मुझे शर्म ना आए, मतलब वो कह रहे हैं कि आप टिप देंगे मैं कैसे इजहार करूं, क्योंकि आपने कहा ना कि इजहार करें, तो कैसे इजहार करें
1: आप? मतलब क्या, मतलब मैसेज से करना है या रियल में भी?
0: नहीं नंबर नहीं है, नंबर नहीं है बाजी,
1: मतलब कहाँ से तैयार हो गया आपको?
0: नहीं
1: सोशल मीडिया से हुआ है या फिर आपको रियलिटी जैसे कॉलेज?
0: मैं बता रहा हूँ,

0: जी जी टाइप
1: हुआ है।
0: बिस्मा बाजी वो कह रहे हैं कि वो ना उनकी क्लास फेलो है और नंबर उनके पास नहीं है। बिस्मा बाजी
1: नंबर नहीं है?
0: नहीं बाजी।
1: तो फिर आप डायरेक्टली जाके बोल दो लेकिन क्लास फेलो है आपकी तो कौन सी को सोशल मीडिया पे स्नैपचैट पे मिल गई आपको।
0: लेकिन बाजी वो तो डर रहा है ना बाजी, आप मतलब कैसे कोई रुका शुका फेंक दे, कोई लेटर शेटर लिख दे।
1: हाँ कोई लेटर लिख दो आप।
0: अच्छा मैंने कभी ये काम नहीं किया। मैं तो वैसे ही जेन में आइडिया है, मतलब कुछ शक में ना पड़ जाइए।
1: हाँ हाँ भाई आप मुझे पता है आप मेरे भाई हो।
0: मैं तो बड़ा शरीफ
1: को पता ही होता है कितने
0: मैं बाजी
1: पता है भाई।
0: मैं बाजी इड्डा शरीफ मैं दोनों की दसा
1: शरीफ आप।
0: अच्छा वो फिर ये रुके वाला आइडिया दे दे मुनी भाई को।
1: वाला
0: रुका मतलब वो लेटर लिख के फेंक दे ये वाला और
1: लेटर कबूतर वाला दे दे।
0: हाँ कबूतर कबूतर ठीक है बाजी मैं उनको बता देता हूँ। अल्लाह हाफिज है ठीक है। हाँ। ओके अल्लाह हाफिज बाजी। अच्छा वो क्या कहते हैं मुनीब भाई आपने लेटर लिखना है लेकिन लेटर के नीचे अपना नाम नहीं लिखना क्योंकि अगर लेटर पकड़ा जाए तो आप कह सकते हो भाई मैंने नहीं लिखा। और एक और चीज कोशिश करो कि खुद ना लिखो किसी और से लिखवाना क्योंकि सम टाइम वो हैंड राइटिंग भी मैच करते हैं लोग। मतलब मैंने कभी किसी को नहीं दिया वैसे कॉमन सेंस की बात करो। आप लोग क्यों शक की मतलब क्यों देख रहे हो मुझे ऐसे यार जिशानियंस मुझे क्यों देख रहे हो ऐसे। मैं तुम्हारा जिशान नासिर हूँ मैं तुम लोगों का। मैंने कभी नहीं किया ये यार। मतलब मैं तो मुनीब भाई की हेल्प कर रहा था कॉमन सेंस की बात उनको बता रहा हूँ कि नाम नहीं लिखना और किसी और से लेटर लिखवाना ताकि हैंड राइटिंग में जानी ना।

0: हमको पसंद नहीं है कोई हम नाम तेरा, हमें पसंद नहीं है कोई हम नाम तेरा, कोई तुच्छा हो तो फिर नाम भी तुच्छा रखे, हमें पसंद नहीं है कोई हम नाम तेरा, कोई तुच्छा हो तो नाम भी तुच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम, क्या हाल है डॉक्टर इक्तदार खान साहब?
1: आपके क्या हाल है? मैं तो ठीक ठाक हूँ
0: सर, मैं बहुत फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, रोज 100 डंट निकालता हूँ सर।
1: आवाज ऐसे करना, जुमरात का जब ख्याल आता है तो आप पर ख्याल आता है, यानी आप और जुमरात लावे में मज़लूम हो गए
0: भाई। वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। कहता है कि मेरे कासे में भी कुछ डाल है सखी इब्ने सखी।
1: वाह,
0: मेरे कासे में भी कुछ डाल ए सखी इब्ने सखी। बा खुदा मैं सारी रात अब अगला जुमला पढ़ता रहूं, हक अदा नहीं होता, दाद वहां से मलाइक लेकर आएंगे जहां से लाने का हक है, अगर कोई सुनने की ताब रखता हो। कहता है मेरे कासे में भी कुछ डाल ए सखी इब्ने सखी, तेरे असगर तेरे अकबर तेरे सज्जाद की खैर।
1: वाह वाह वाह वाह, इस घर पे तो सवाल भी अनमोल चाहिए।
0: वाह वाह,
1: इस घर पे तो सवाल भी अनमोल चाहिए भाई, जैसे सखी है वैसा ही कशकोल चाहिए।
0: भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई।
1: आपको ये सुन के इंतहाई हैरत होगी कि आज मैंने अपना पुराना मोबाइल उसको बेच दिया और नया मोबाइल मैंने बुक करवाया है, 2-3 दिन बाद आएगा। तो मैं एक छोटे से मोबाइल के ऊपर सेट कर रहा था कि किस तरह सेटिंग की जाए, सेटिंग बड़ी मुश्किल होती है प्ले स्टोर पर जाने के बाद करते करते करते,
0: और हमने
1: ही देखा है कि नियत अगर सच्ची हो अच्छी हो तो काम बन ही जाता है।
0: और आपकी उम्र में तो वैसे ही सेटिंग बड़ी मुश्किल होती है, ऐसे ही है।
1: कसम से कसम से, बिल्कुल सही बात की आपने। आज यकीन करें अगर मैं पुराने दौर में होता और नेट आ गया होता, मोबाइल आ गया होता, तो मतलब मैमने पे मैसले पे कल मैं हर तरफ इख्तदार अली खानी होते।
0: भाई वाह भाई वाह भाई वाह,
1: आप यकीन करें अपने, हालांकि अपने तारीफ करते हुए अच्छा नहीं लगता है, मगर जब गैर अपनी तारीफ नहीं करते मेरी तो मुझे खुद करनी पड़ती है
0: सर। हमें आपकी गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि आप अपने प्राइम में बहुत माशाल्लाह शपाटर किस्म के आदमी रहे होंगे, और बल्कि आप जब सर जवान, अभी भी माशाल्लाह आप जवान हैं, लेकिन जब आप जाहिर है नौमरी में होंगे।
1: नहीं नहीं, मेरी सिस्टर ने मुझे आज से तकरीबन आप समझिए 1978-79 की पिक्चर भेजी है, और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं हूँ।
0: अच्छा, नहीं मैं वही अर्ज आपसे कर रहा था कि आप माशाल्लाह जब नौजवानी में होंगे तो एक गाना है सराइकी का, अगर आपको समझ में ना आए तो मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। यकीनी तौर पर ये गाना आपके लिए होता होगा कि

0: बताना
1: क्या प्यारी है, क्या प्यारी है बाबा माशाल्लाह। कभी रहन इस तरफ जाता है मतलब कंपेयरिंग में, जनरल नॉलेज में, रूहानियत में, आवाज में और खूबसूरती में और बर्दस्तगी में, हर राविये से मौला ने अल्लाह ने आपको क्या नवाजा है।
0: लेकिन बस फिर भी शादी नहीं हो रही देखें।
1: अल्लाह ने आपको बचाया है, आपको इसका ही खबर नहीं है अभी तक।
0: सर मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बस
1: मेरा एक मशवरा है आपको।
0: हाँ मशवरा दें सर, मशवरा दें।
1: कसम से मशवरा है।
0: हाँ हाँ।
1: और मैं अपने करीबी करीन दोस्तों को जो भी मिलता है उनको एक मशवरा ये जरूर देता हूँ कि शादी जब हो तो केमिस्ट्री मिलती भी हो,
0: फिजिक्स भी मिलती होनी चाहिए सर।
1: नहीं केमिस्ट्री, ज़हनी केमिस्ट्री।
0: सर ज़हनी केमिस्ट्री तो फिर अब कैसे बंदा मिला है, अब यही तो मसला है, केमिस्ट्री के चक्कर में ही मैं 32 साल का
1: हूँ। नहीं ज़हनी केमिस्ट्री अगर मिल जाएगी तो आप भी समझ लें कि आपने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया।
0: लेकिन सर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मतलब बस करीब ही है मामला, मुझे मेरा दिल कहता है सर
1: शादी के।
0: हाँ शादी के करीब ही।
1: आप क्या अगर अभी नहीं करेंगे क्या बुढ़ापे? वो मैंने एक जगह ये उस पर देखा था फेसबुक पे, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी है, बहुत मतलब 99+। वो कह रहा है कि मैं अभी भी बहुत ही भरपूर तबाना हूँ, कुत वाला हूँ, हिम्मत वाला हूँ, मुझे एक अदद रिश्ते की जरूरत है। तो मैंने कहा आप गलत लिख रहे हैं, आपको रिश्ते की नहीं फरिश्ते की जरूरत।
0: बल्कि उनको एक अदद रक्षे की जरूरत है।
1: बात असल में ये है।
0: अच्छा
1: कि मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ।
0: अच्छा वो इत्तेदार साहब बात सुनना,
1: आपको मिल जाएगी ना लाइफ पार्टनर।
0: करते हैं केमिस्ट्री। अच्छा मेरी बात सुने ना सर, शादी की बातें ना करें फिर मेरा दिल करता है शादी करने को। अच्छा अच्छा बात सुने सर, एक गाना है, मैं आपके लिए गाना गाऊं सर?
1: आपकी आवाज ही है।
0: हाँ, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा गाने का कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। वो एक खातून है, उसकी ना चूड़ी टूट गई है। अब चूड़ी कैसे टूट गई है ये वाक्य आप फिर रहने देते हैं हम, ठीक है? अब वो जिस तरह टूट गई है ना, तो वो अब हो गई है नाराज, जो उसका महबूब है उससे नाराज हो गई है और कह रही है कि मैंने ये चूड़ी झंग से मंगवाई थी, झंग की चूड़ियां बड़ी मशहूर है ना, तो वो अब अपने महबूब से लड़ रही है कि मैंने ये झंग से चूड़ी मंगवाई थी और तुमने मेरी चूड़ी तोड़ दी है, ठीक है? तो अब उसको वो गाने में जवाब दे रहा है, जरा सुनिएगा। कहता ए वंग टूट गई ते कोई गल नहीं, तेनू वंग दी वंग मंगवा दे सा। वंग टूट गई

एक शख्सियत ऐसी गुजरी है पाकिस्तान में, जिसके बचपन में उसके वालिद ने उसको बाउंडेड लेबर में लगाया। और बाउंडेड लेबर से मुराद है कि तनख्वाह वालिद को मिला करती थी, वो बच्चा वहाँ पे सिर्फ काम किया करता था और कारपेट बनाने का काम करता था। और ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत भारी भारी सामान आपको उठाना पड़ता है, बहुत झुक के आपको उसको बुनना पड़ता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो बच्चा वहाँ से भाग निकला, नज़र बचा के भाग निकला। वो नहीं चाहता था कि वो बाउंडेड लेबर करे, छोटा था, तकलीफ दे काम था, घुटन होती थी उसको। लेकिन बच्चा था, कहाँ तक भागता। किसी तौर उसको पकड़ा और पकड़ के वापस उन लोगों के हवाले किया गया। तो जब उसको उनके हवाले किया गया, तो उस बच्चे को इब्रत देने के लिए, या जो बाकी तमाम तर बच्चे वहाँ पर काम कर रहे थे या बाउंडेड लेबर काम कर रही थी, उनको इब्रत देने के लिए उन्होंने उस बच्चे से कहा कि अपने पसंद की सोटी यहाँ से निकालो, अपने पसंद की सोटी निकालो यहाँ से। वो बच्चा, चूंकि बच्चा था, उसको लगा कि बारीक सोटी होगी तो शायद दर्द नहीं होगा। तो उसने एक सोटी वहां से निकाल के उस शख्स को दी जो कि बाउंडेड लेबर उनसे करवाता था। उस शख्स ने गाना लगाया और कहा कि इस पर डांस करो, और दुराने रक्स वो उस बच्चे को सोटी से मारता जा रहा था। फिर जब उसका दिल नहीं भरा इस तशद्दुद से, उसको लगा कि शायद ये इबरत भी काफी नहीं है, तो एक तौक उसके गले में डाला गया और एक पाँव में डाला गया और कहा कि अब नाचो, और फिर उससे उस छड़ी से वार किए गए। आप जानते हैं वो बच्चा कौन था?

उस बच्चे का नाम था अल्लाह रखा पेप्सी, और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ वो इस दुनिया में नहीं है, वो अपने खालिके हकीकी से मिल चुका है। और शायद वो शख्स जिसने उसको इबरत का निशाना बनाने के लिए इकदाम किया था, शायद वो भी अब इस दुनिया में नहीं होगा। उसका मामला अल्लाह के सपुर्द, लेकिन याद रखिएगा, खुदा ताला ने कहा है कि एक दिन ऐसा है जब किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। गालिबन दो दिन पहले अल्लाह रखा पेप्सी साहब, पाकिस्तान के कॉमेडियन जिनका इंतकाल हुआ दौरान परफॉर्मेंस ही, उनको हार्ट अटैक आया, हरकतें कल बंद होने से उनकी मौत वाकया हुई। और उनका एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उस इंटरव्यू में ये बात उन्होंने बताई, और उन्होंने कहा यही वजह है कि जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो आप अक्सर मेरी परफॉर्मेंस में चीख अचानक निकलती हुई सुनते हैं या देखते हैं, वो यही वजह है कि ये ट्रामा मेरे साथ अभी तक है। मैं नाचते हुए एकदम चीखता हूँ, ये चीख मुझे उस दौर की तरह लगती है कि जब मैं नाचता था और वो मुझे मार रहा था। सो खैर, ओवरनाइट वो लेजेंड भी बन गए। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था, लेजेंड अल्लाह रखा पेप्सी एंड ऑल दैट, सारी ज़िंदगी उनको काम ढूंढने में लगी। उनके बेटे का इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे थे मेरे वालिद सारी ज़िंदगी दो मरले का मकान बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए, और अब जैसे ही वो फौत हुए तो हम उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। मुर्दा परस्त लोग हैं हम, लेकिन उससे कहीं बढ़ के एक चीज़ जो कि मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर मुझे इरफान खान साहब का एक जुमला बहुत शिद्दत से याद आ रहा है। पड़ोसी मुल्क के एक एक्टर थे, चंद ऐसे एक्टर जो कि मेरे दिल पर राज करते हैं, उनमें से एक इरफान साहब थे, अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे। उन्होंने एक जुमला एक इंटरव्यू में कहा था, बहुत मज़ेदार जुमला था और क्या कमाल जुमला था। उन्होंने कहा कि जब हम जैसों का टाइम आता है तो मौत बीच में आ जाती है। जब हम जैसों का टाइम आता है तो मौत बीच में आ जाती है।

बार कैफ कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप ज़रूर इंटरवीन कीजिए, लेकिन ख्याल रख के कीजिए, क्योंकि अभी एक वाक्य आपके सामने आया। और अच्छा, एक चीज़ और यार, मैं बड़े बबांगे दोहल ये बात कहना चाहूँगा कि आज कोई खातून क्यों पोस्ट नहीं कर रही है पाकिस्तान एयरफोर्स के उस ग्रुप कैप्टन पायलट के बारे में जिसने अपनी जान देकर एक लड़की की जान बचाई। जब कोई मर्द किसी खातून की इज्जत पे हाथ डालता है और कोई ऐसा करे तो यकीनन उसके ऊपर लान तान भी करनी चाहिए, उसके ऊपर बात भी करनी चाहिए, उसके हर मामला उसके साथ होना चाहिए। लेकिन आज जब उसी मर्द ने एक लड़की के लिए अपनी जान तक दे दी तो क्यों बात नहीं हो रही? क्या सोशल मीडिया उस तरह रिएक्ट कर रहा है? क्या आज वो फेमिनिस्ट आपको उस तरह से पोस्ट करती भी नजर आ

रही हैं, अपने दिल पे हाथ रखे हैं, किसी की एजेंडे का या प्रोपेगेंडे का हिस्सा क्यों बनना हमने? अपने दिल पे हाथ रखें, खुद देखें, खुद समझें, खुद सोचें। एक मर्द जिसने एक ऐसी लड़की के लिए जिसको वो जानते भी नहीं थे, फिर बहुत सारे लोगों ने कहा ये कैसे हो गया कि वो इंटरवीन कर रहे थे, वो गाड़ी में बैठे हुए थे, सीट बेल्ट थी। अरे भाई, एक बंदे ने अपनी जान दे दी है एक वाक्य के लिए, किसी लड़की को बचाने के लिए। देखें, ये बहुत ही एक आम सतही जहन का आदमी, उसको भी बात समझ में आ सकती है कि आप रोड पे जा रहे हैं, आपने देखा कि दो लोगों के दरमियान लड़ाई हो रही है तो आप रोकेंगे, इमिडिएटली बाहर तो नहीं आएंगे। अगर वो उसका फासला इतना है कि आप गाड़ी में बैठे बैठे उससे बात कर रहे हैं तो आप उससे बात करेंगे। उसने कहा कि हमारा पर्सनल मैटर है। वो शख्स थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्होंने रियर व्यू में देखा, जो इत्तलात मुझ तक पहुंची है, जो मैंने रिसर्च की है इसके ऊपर, जो मैंने पता लगाया है, कुछ मेरे दोस्त जो इन्वॉल्व हैं लॉ एनफोर्समेंट में, तो इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक वो चल दिए। जब उन्होंने रियर व्यू इमेज में देखा तो पीछे उस लड़के के हाथ में पिस्टल थी। उन्होंने यू टर्न लिया, वापस आया और उसको कहा कि क्या कर रहे हो, और इसी दौरान उसने फायर किया, जिस पे उनको फायर लगा और वो शहीद हो गए। लेकिन क्यों कोई बात नहीं करा आज? क्यों उस बंदे की इतनी पजीराई नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि आज जान बचाने वाला या इज्जत बचाने वाला या अपनी जान देने वाला एक मर्द था। शायद ये चीज बिकेगी नहीं। हेट बिकती है ना, नफरत बिकती है। खैर, कोशिश करें यार, कोशिश करें, खुली आंखों से जिंदगी जिएं।

बड़ी जबरदस्त बात की है भाई। मैं नाम लेकर ये सवाल पढ़ना चाहूंगा, आई थिंक हयात हैं। बड़ा जबरदस्त सवाल उन्होंने किया। उन्होंने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है, मैंने आपसे बात करने के लिए 8 साल इंतज़ार किया है और मेरा आपसे सवाल है आज, और सवाल ये है कि क्या औरत को भी विलायत मौला अली मिल सकती है। बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं करूँगा आगे चल के, ज़रूर मेरे साथ रहेगा और मैं ज़रूर इसको आंसर करूँगा। खैर मैं ये कह रहा था कि आपके आसपास इवन हमारे घरों में डोमेस्टिक हेल्प होती हैं, उनके बच्चे आ जाते हैं उनके साथ, तो कोशिश करें कि जो डोमेस्टिक हेल्प आई हैं, बाजी आई, जैसे हमारे घर में बाजी आती हैं, कभी कभार उनके साथ उनका बेटा आ जाता है जो कि छोटा है, मतलब 6-7 साल का है, तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि घर का कोई काम वो ना करे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करते हैं यार, मतलब आप यकीन जाने, बल्कि मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। उसने मेरा नाम रखा है, बल्कि मैंने शायद एक दफ़ा बताया भी था, मैं देखता हूँ आप लोगों में से कितने बच्चों को याद है, मैंने बताया था उसने मेरा एक नाम रखा हुआ है। क्या नाम रखा है बताएं? क्योंकि वो अमूमी तौर पे जब आता है तो मतलब महीने में एक बार या दो बार या तीन बार आता है, तो अक्सर हम प्ले स्टेशन साथ खेलते हैं या मेरे पास अक्सर कैंडीज़ वगैरह या बिस्किट्स वगैरह होते हैं, मैं गाड़ी में रखता हूँ, क्योंकि अमूमी तौर पर जब सड़क पर बच्चे आते हैं मैं पैसे नहीं देता, मैं बिस्किट दे देता हूँ या कोई ऐसी चीज़ दे देता हूँ। मेरे पास अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मैं देता हूँ तो बहुत खुश होता है। तो वो उसने मेरा एक नाम रखा हुआ है, मैंने बताया था एक प्रोग्राम में काफ़ी अर्सा कब, याद है या दोबारा बताऊँ?

अरे भाई क्या बात है यार, हरीबा महमूद बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन अंकल हटाओ भाई है यार। जीनिया हाकिम तुमने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल जी साफ सुथरा भाई। मेरी अम्मी बड़ा हंसती हैं इसके ऊपर। एक दिन मैं घर पे नहीं था, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर, शायद लाहौर में था, तो मैं वापस आया तो अम्मी कहती हैं कि आज वो आया था तो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मैंने कहा अच्छा, कहती हैं, कहता है वो साफ सुथरा भाई कहाँ है। तो मेरी अम्मी इतना हंसे, मैंने कहा यार ये सही नाम रखा है उसने, मेरा साफ सुथरा भाई।

खैर, आई वाज सेइंग इज क्योंकि मैं तकरीर मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं ही आपको कोई एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि मेरे घर में भी जो डोमेस्टिक हेल्प आते हैं हमारी बहनों की तरह हैं, हमारी बाजियों की तरह हैं, डिस्पाइट बीइंग द मैटर ऑफ द फैक्ट घर में कुछ असूल होने चाहिए. मैं अपने वालदा के साथ बैठा हुआ था, परसों की बात है, और हम यही डिस्कस कर रहे थे, और फिर मैंने ये सोचा भी कि मैं रेडियो पे भी ये बात करूँगा. ख़ासतौर पे जो मर्द मुझे सुन रहे हैं, देखो यार, रूल घर के बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसको इम्प्लीमेंट करना करवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है. डेफिनेटली आपकी जो वाइफ है, आप उसको प्यार से रिस्पेक्ट से बताओगे, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगी. कोई ऐसा नहीं है कि कोई कैडेट कॉलेज है कि कोई एक रूल ब्रेक हो गया तो बस फिर आपने सजा दे देनी, ऐसा नहीं है. लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि उस रूल्स को कोई फॉर ग्रांटेड ना ले. मैंने शायद पहले भी बताया था कि अगर मेरी वालदा ना हो और दो तीन दिन मेरी वालदा ने अगर ट्रैवल करना हो या कहीं पे जाना हो, कोई शादी हो, कोई ऐसा मामला हो, क्योंकि मैं अमूमी तौर पे शादियों में नहीं जाता, तो अगर मेरी वालदा ने गांव जाना हो या किसी के घर जाना हो, तो वो डोमेस्टिक हेल्प जो हमारी बाजी हैं जो आती हैं, उनको मना करती हैं कि आपने नहीं आना. बल्कि दो तीन बार तो वो उन्होंने इजहार किया कि बाजी बिल्कुल मेरे बेटों की तरह, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आके सफाई कर जाया करूँगी. तो अम्मी ने मना किया. क्यों? क्योंकि ये हमारे घर का रूल है और ये मैंने बनाया हुआ है कि अगर अम्मी घर पे नहीं है तो कोई खातून डोमेस्टिक हेल्प नहीं आएंगी घर पे. इसी तरह अगर डोमेस्टिक हेल्प के साथ कोई बच्चा आया है तो कोई इशू नहीं है, बच्चा आराम से बैठेगा, बच्चा कोई काम नहीं करेगा. ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को कहा जाए कि बेटा ये कचरादान में ये फेंक दो या ये ऐसे कर दो या जूते यूं रख, नहीं, बच्चे से कोई काम नहीं लिया जाएगा. बच्चा आया है, कोई मसला नहीं है, सौ बिस्मिल्लाह, बैठे, टीवी देखे, कार्टून देखे, कैंडीज खाए, जो जाते हुए आप अपने बच्चे को ले जाइएगा. लेकिन दैट इज़ द रूल. इसी तरह और चंद रूल्स हैं. किसी ने अगर घर पे आना है और ख़ास तौर पे किसी मर्द ने, तो दे शुड कॉल मी फर्स्ट. मतलब वो मुझे कॉल करेंगे. मैंने अपने घर में कहा है कि अगर कोई भी हमारा रिलेटिव, स्पेसिफिकली कोई मेल अगर आता है और बिना बताया आया, तो आप बेशक दरवाज़ा ना खोलें, कोई इशू नहीं है. अगर फैमिली के साथ है फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर अकेला है और मुझे इन्फॉर्म उसने नहीं किया है, मुझसे रबता नहीं किया है, तो आप दरवाज़ा ना खोलिए. आप बेशक कह दें कि घर पे नहीं है, मुझे कॉल करेंगे तो मैं इनको कह दूंगा आपको मुझे इन्फॉर्म करके आना चाहिए. दिस इज़ सम रूल्स यार. हो सकता है अब अगर कोई सुन रहा है तो कहेगा यार क्या ये धकिया नहीं उसी बात है, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़ मैन. कोई लेकर आओ. सिर्फ मजलिस सुन कर घर नहीं जाना होता, सिर्फ इमाम अली को सुन के घर नहीं चले जाना होता, कुछ चीज़ें निकालनी होती हैं उनमें से, कुछ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना पड़ता है, तब कुछ चीज़ें तब्दील होती हैं.

0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो हेलो, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो कॉलर।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: सर लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ।
0: क्या हाल है नवीद साहब, ठीक हैं?
1: ये दम दम खुश थे, हर दम खुश थे। क्या हाल है?
0: करम करम करम करम, आप सुनाए।
1: शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिस साल में मेरा मालिक रखे सर, करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र उस मालिक।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और
1: सर अगर अगर आपकी इजाजत हो तो सीधे के दो से सुना सकता हूँ?
0: जी जी सुनाए सर, बिस्मिल्लाह।
1: गम गम अली अली अली अली कर, हर गम अली अली अली अली कर, गम गम अली अली अली अली कर, हर गम अली अली अली अली कर, गम गम अक गम गम अली अली अली अली कर, हर गम अली अली अली अली कर।

0: दम दम अली अली अली अली कर हरे दम अली अली अली अली कर।
1: भाई वाह क्या बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई हुक्म हमारे लाइक?
0: हुक्म सर कुछ भी नहीं, सिर्फ सोचिए सर, जब भी आप लाहौर आएंगे, लाहौर स्टूडियो से शो करेंगे, सिर्फ आपसे मुलाकात करनी है सर, बस मेरी यही।
1: सर मैं असल में पता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने एक्चुअली एक दफ़ा अनाउंस किया था, आपकी बात नहीं करें इन जनरल बात करूँ, मैंने एक दफ़ा अनाउंस किया था कि मैं लाहौर फलां जगह पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं बहुत सारी बातें ऑन एयर इसलिए भी नहीं कहता कि एक यू नो ब्रैगिंग लगती है, वो एक अजीब सी सिचुएशन लग जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे आए थे, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन वो क्लोज इवेंट था। बार कैफ मैं बुध के दिन इंशाल्लाह लाहौर में मौजूद रहूँगा, और इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं, आप मेरे इंस्टा पे ज़रूर रहिएगा, जितने जिशानियन सुन रहे कुछ चीज़ें हैं आपके लिए भी, कुछ प्राउड शायद आप महसूस करें उसको, और इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं, तो मैं इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन बहरहाल देर आर हाई चांसेस कि इंशाल्लाह आई विल बी इन लाहौर ऑन वेंसडे इंशाल्लाह। ठीक है,
0: लाहौर तो सर और आपसे बात यही था, लेकिन आपने पिछले जुमेरात को आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि मैं लाहौर स्टूडियो से शो करके फिर वापस जाऊंगा।
1: जी मैं बिल्कुल ऐसे ही होगा, मैं हो सकता है कि बुध की शाम मैं प्रोग्राम करूँ लाहौर स्टूडियो से। ठीक है,
0: ठीक हो गया सर इंशाल्लाह सर, अगर जिंदगी रही सांसा ने वफा की तो इंशाल्लाह आपसे वहीं पर मुलाकात
1: होगी। जरूर सर जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: ओके
1: सर, ओके अल्लाह हाफिज। सच्चल साही मेरा, अल्लाह मेरे दिल के अंदर, ए मोमिन हक कलंदर,
2: जो मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें।

वेल जनाब चले मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रेडियो पाकिस्तान लाहौर का जो इदारा है उसने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम अनाउंस किया है जिसके थ्रू बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो मुस्तफीद हो रहे हैं। एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद बहुत सारे इंटर्न्स को मौका दिया गया है कि वो बराहे रास्त बहुत सारे प्रेजेंटर्स से उनके एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए कुछ सीख सकें, कुछ शेयर कर सकें प्रेजेंटर्स उनके साथ। और एक प्रॉपर ट्रेनिंग का सिलसिला जारी है जो कि आई थिंक 30 जून से शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऊपर उनको ट्रेन किया जा रहा है जिसमें प्रोग्रामिंग है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, स्पीकिंग है, तलफ़ुज़ की अदायगी है। उसी में एक डिपार्टमेंट है किस्सा गोई, स्टोरी टेलिंग। आई एम वेरी हम्बल्ड, आई एम वेरी ओवरवेलम्ड टू टेल यू के उस डिपार्टमेंट के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आई एम वेरी हम्बल्ड दैट आई एम बीइंग कंसिडर्ड बाय देम। और बुध को जो सेशन होगा उनका आई विल बी टेकिंग दैट सेशन ऑन storytelling and all that stuff. My very kind gratitude to Asad Abrar Bhai aka DJ Dogs, all the management of Lahore and definitely Radio Pakistan. Hamare mulk ka talent hai. So I hope that I can contribute in any kind of positive way.

0: और मेरा बड़ा दिल कर रहा था बीबी पाक दामना पे जाने का, मेरी बड़ी एक उनसियत है उस जगह से। रूहानियत तो पता नहीं हम जैसे लोगों में कहाँ होती है, लेकिन उनसियत मेरी बहुत है उस जगह से। मेरा बड़ा दिल कर रहा था पिछले दिनों के यार आई शुड बी देयर। तो बड़ी खूबसूरत जगह है यार, जो लोग लाहौर में रहते हुए वहाँ पर नहीं जाते या सालों गुजर जाते हैं नहीं जाते, तो बहुत बहुत मेजर चीज़ मिस कर रहे हो तुम लोग यार। हाँ, और बाकी वो खातून ने जो सवाल किया था उसके ऊपर हम जरा प्रोग्राम में आगे चल के बात करते हैं, और उसको मैं लिंक अप करूँगा कुछ आदाब के साथ। इस बार जब मैं जलूस में था, 9 मुहर्रम को जो मरकज़ी जलूस निकाला जाता है इस्लामाबाद में, हर साल की तरह मैं उसमें मौजूद रहा। और दुनिया भर में, पाकिस्तान भर में कुछ जगहों पे 9 मुहर्रम होता है, कुछ में 10 मुहर्रम होता है, तो मुझसे अमूमी तौर पे सवाल किया गया कि क्या ख़वातीन जा सकती हैं। तो इस सवाल को भी आंसर करते हुए, वलायत वाले सवाल को भी आंसर करते हुए, और उसके साथ यकीन जानिए, इस साल जब मैं 9 मुहर्रम के जुलूस में खड़ा था, मैंने उसमें अहद किया था कि जब मैं दोबारा प्रोग्राम करूँगा रेडियो पर तो मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि जुलूस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिन पे को हमें हमें मरूने खातर रखना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आई होप कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और चीज़ है यार, चूँकि हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसमें बहुत सारे लोग हमें सुनते हैं यार, कभी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, कभी अगर आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर मेडिकल हेल्प आपके बहुत करीब नहीं है, तो अगर आपके चेस्ट पेन हो तो आपने, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, आप इसको याद कर लें और इसको कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये कहीं पर सुना और मैंने इसको जब प्रैक्टिकल किया तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मुझे बड़ी इसमें वाकई अफाका महसूस हुआ कि वाकई काफ़ी फ़ायदा मंद चीज़ है, इससे फ़र्क पड़ता है। अब लाजमी नहीं है, अल्लाह ताला सब पे बखैर आफियत रखे, कि अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है तो वो कार्डियक अरेस्ट की तरफ या हार्ट अटैक की तरफ जाएगा, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। समटाइम एसिडिक भी होता है, एसिडिटी भी होती है, गैस्ट्रिक भी होता है, अंजाइना भी होता है, हार्ट से रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है, लेकिन इन एनी केस अगर आप ड्राइव कर रहे हो या किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मेडिकल हेल्प आपके बहुत करीब नहीं है, दूर है, तो आपने एक सिंपल चीज़ करनी है और आपने करना है हम, समझ रहे हैं, और ये आप जितना प्रोलॉन्ग कर सकते हो 30 सेकेंड 40 सेकेंड और तकरीबन 4-5 दफ़ा करो इसको, मतलब हम कहते हैं ना हम मतलब ऐसे आपने करना है कि आपको वाइब्रेशन अपने चेस्ट के अंदर महसूस हो, आपको जैसे वाइब्रेट हो रहे हैं आप ना, ऐसे करना है, इससे बहुत इफेक्टिव है ये। मैंने कहा चले मैं शेयर कर दूं, हो सकता है किसी ना किसी का फायदा हो जाए जो सुन रहा हो, इट इज़ रियली रियली इफेक्टिव।
1: मेरी चाहत है तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें।

0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो।
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: हाँ ठीक हूँ जी। कौन बात कर रही हैं? गोलड़ा शरीफ से। कौन, दोबारा बताइएगा। मिसेज
1: नसीम।
0: चलें, जो भी बात करी है सुनाए, हुक्म, क्या कहना चाहेंगी?
1: आवाज आ रही है मेरी?
0: जी जी आ रही है, इतने गुस्से में क्यों है आप?
1: नहीं, वो आपको नाम की समझ नहीं आया ना, तो मैं समझी आवाज नहीं आ रही।
0: खैर है, कोई बात नहीं। नाम मैंने कौन सा कमेटी डालनी है आपकी, आप बताएं, हुक्म करें, क्या कहना चाहेंगी?
1: अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने कहा था ना कि सिरके की बात, कहते हैं कि हुसैन सारे सिरके मिटा गया है। अब तो या हुसैन ही है या जिजी है, हुसैन ने सारे सिरके मिटा दिए।
0: सही बात है, सही बात है।
1: थोड़ा सा इशारा है सरकार की शान में। अगर
0: सुनाए जी, सुनाए सुनाए सुनाए सुनाए, बिस्मिल्लाह।

और वो औरतों का हाथ पकड़ के दम करता है या उनको टच करके दम करता है, तो यकीनी तौर पर मुझे तहफ़ुज़ात हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जिशान साहब, आप भी तो कॉन्सर्ट करते हैं और कॉन्सर्ट होस्ट करते हैं, सामने लड़के लड़कियाँ होते हैं, तो भाई मैं कोई सवाब की नीयत समझ के नहीं करता, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। मैं उसको ठीक नहीं कह रहा कि वो ठीक है, लेकिन मैं उसको सवाब समझ के नहीं कर रहा होता, वो एक काम समझ के कर रहा होता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जबकि दूसरी साइड पर ये चीज़ ये समझ के की जा रही होती है कि इस शख्स के पास विलायत है और ये सवाब का काम है। क्यों क्यों तहफ़ुज़ात हैं? अब सवाल आपका ये बनता है, भाई जिशान साहब आपको क्या मसला है? अगर कोई पीर बाबा या कोई भी शख्स किसी को, किसी मर्द को तो ठीक है, लेकिन अगर किसी औरत को हाथ पकड़ के या उसको टच करके दम करते हैं, तो आपको क्या मसला है? वो मसला इसलिए है कि जिनसे विलायत लेने के दावेदार हैं, वो जिनको इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, वो एक दफ़ा एक जगह से गुजर रहे थे, तो लोगों ने, जाहिर है इमाम अली अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, उनको पता चला, तो उन्होंने कहा इमाम हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मर्द हैं वो मेरे हाथ में अपना हाथ दें, बैत करें, और जो ख़वातीन हैं एक पर्दा लगाया जाए और एक पानी का बर्तन दरमियान में रखा जाए, मैं पानी के ऊपर हाथ लगाऊंगा, हाथ उठाऊंगा, और ख़वातीन उस पानी के ऊपर हाथ लगा दें। इमेजिन, ये आपका इमाम है, तो जो आपके इमाम हैं अगर आप के मामलात उनसे जुदा हैं, तो फिर मुझे तहफ़ुज़ात है। सो इसलिए विलायत का अगर तो आपके जहन में मकसद ये है, तो फिर तो आई डोंट थिंक सो, ये सिर्फ औरत नहीं मर्द के पास भी होगी तो मुझे तहफ़ुज़ात है। लेकिन अगर विलायत से मुराद आपकी रूहानियत का वो मयार है कि आप दिल में कुछ सोचें और अल्लाह ताला उसको पूरा कर दे आपके लिए या दूसरे के लिए, आप किसी के लिए दुआ करें, आपका दिल जिक्र शुरू कर दे, आपका दिल विलायत के उस मर्तबे पर पहुंच जाए कि आप दिल में सोचें कि या अल्लाह ये काम ऐसे हो जाए तो अल्लाह आपके हक में कर दे, अगर आप किसी बीमार के लिए दुआ करें तो अल्लाह उसको आपके कहने के सदके शिफाए आप कर दे। बहुत सारे मामला ज़िंदगी में ऐसे हैं कि आप विलायत की रोशनी इतनी अंदर आपके अंदर भर जाए, आपके दिल से जिक्र जारी हो जाए और अल्लाह फिर उस दिल की दुआ अदा करे, तो इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल मिल सकती है। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत, मौला अली अलैहिस्सलाम की रूहानी रोशनी यकीनन 100% मिल सकती है। इसमें खातून का और मर्द का होना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो इसमें कोई कंडीशन हो कि मर्द है या औरत है। अच्छा, अब आते हैं यार उस चीज़ के ऊपर जो मैं कह रहा था कि मैंने नौवीं मुहर्रम के जुलूस में खड़े होकर ये अहद किया था, ये बात की थी, मैं पिछले शो में भी बात करना चाहता था, फिर हम जिक्र उसकार में हो गए और फिर हम आगे चले गए तो याद नहीं रहा। एक सवाल मुझसे किया जाता है कि क्या खवातीन जा सकती हैं, उसको आंसर करते हुए एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करूँगा कि जुलूस में जाने के या किसी भी ऐसी जगह पर जाने के जहाँ पर आप सवाब की नीयत से जा रहे हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, और बिलखसूस जो ये हस्तियां हैं इनके हवाले से। सो सबसे पहले तो जो सवाल है कि क्या औरत जा सकती है, वो प्रोटोकॉल का पहला पॉइंट है और वो ये है, बिल्कुल जा सकती है, लेकिन अपने महरम के साथ जाए, अपने भाई के साथ जाए, अपने शौहर के साथ जाए, अपने बेटे के साथ जाए, अपने बाप के साथ जाए, महरम रिश्ते के साथ जा सकती है, ज़रूर जाए, ज़रूर जाए। बल्कि जो मर्द हजरात सुन रहे हैं, लेके जाओ यार, ज़रूर जाओ। आप में से बहुत सारे ज़िशानियंस ने शायद इसको आई विटनेस भी किया होगा, अपनी आंखों से देखा भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ज़िशानियंस मिलते हैं जुलूस के अंदर। आपने देखा होगा कि जिस तरह एक बॉडी गार्ड चलता है ना किसी के साथ, मैं उस तरह अपनी वालदा के साथ चल रहा होता हूँ, बाखुदा मेरी वालदा बैठी होती हैं, मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। जिशान पानी चाहिए, जी अम्मी। जिशान शरबत चाहिए, जी अम्मी। जिशान कुछ खाने को चाहिए, जी अम्मी। चूँकि डायबिटिक हैं, जिशान टॉफ़ी चाहिए, जी अम्मी। मैं इस तरह से उनके साथ वॉक कर रहा होता हूँ, उनको लेके चल रहा होता हूँ जैसे एक बॉडी गार्ड चलता, ठीक है। सो ज़रूर जाए, लेकिन प्लीज़ इस प्रोटोकॉल को, इस पहले पॉइंट को ज़रूर फॉलो करें, कोशिश करें कि अकेले ना जाएं, कोशिश करें अपने महरम रिश्ते के साथ जाएं, भाई को साथ लेके जाएं, बेटे को साथ लेके जाएं, शोहर को साथ लेके जाएं, बाप को साथ लेके जाएं, किसी भी महरम रिश्ते के साथ, या महरम मर्द आपके साथ होना चाहिए। किसी की जरूरत है कि कोई आपको गलत निगाह से देख सके? वैसे तो खैर वहां पे जाहिर है जो शख्स आज़ादारी की नीयत से आया होता है

वो उसके जहन में तो ये थॉट भी नहीं होती, लेकिन फिर भी जाहिर है इंसान है, बशर है, कुछ भी जहन में दिल में आ सकता है। सो किसी की जरूरत क्या कि आपको देखे, अगर आपके साथ आपका महरम रिश्ता है, भाई की सूरत में, बाप की सूरत में, बेटे की सूरत में, शोहर की सूरत में, तो पहली तो ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। जहां पर जंजीर जनी हो रही हो, ठीक है, जहां पर मर्द हजरात अपनी कमीज उतार के जंजीर जनी कर रहे हों, कोशिश करें कि वहां पे खड़े होकर उनको मत देखें। अभी इस जुलूस में एक चीज हुई, मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। अब मैं अपनी वालदा के साथ चल रहा था और मेरे आगे एक मर्द चल रहा था। वो बेचारा बड़ा शरीफ सा, बड़ा वो अपने हाथ यूँ बिल्कुल बंद करके आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा था। अब आगे एक पॉइंट आता है, यहाँ पे जो लोग इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा कि जो मरकज़ी जुलूस का एक चौक है जिसको हम लाल क्वार्टर चौक कहते हैं, वहाँ पे जंजीर जनी होती है। अब सही है गलत है हम इसकी बहस में ना पड़ रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं करनी चाहिए तो ना करे, उससे सवाल ही नहीं होना, और अगर किसी को लगता है कि करनी चाहिए और वो कर रहा है तो उससे सवाल होना है, तो ये तो मेरी बहस है ही नहीं, सही और गलत की मेरी बहस नहीं है। सो वहाँ पर वो चुके जंजीर जनी करते हैं, तो अब खातून आ रही थी दूसरी, वो खड़ी होकर देख रही थी उनको, और वो जैसे ही मर्द बेचारा गुजरा तो वो आंटी ने उस मर्द को कहा कि अरे भाई थोड़ा साइड से होके चले ना, देखें औरतें चल रही हैं यहाँ पर। तो मैंने उस खातून को कहा, मैंने कहा खातून ये बेचारा तो चल रहा है, इसने तो कपड़े पहने हैं, जिसको खड़े होके जिन लोगों को आप देख रही हैं जो जंजीर जनी कर रहे हैं, उन्होंने तो कमीजें उतारी हुई हैं अपनी, वो महरम है सारे के सारे आपके। तो वहाँ पे दो तीन लोग और खड़े थे, उन्होंने कहा बिल्कुल यार आप सही बात कर रहे हैं। सो जहाँ पर जंजीर जनी हो रही है, कोशिश करें कि वहाँ पे खवातीन खड़ी ना हो। इससे आगे बढ़ें, एक चीज़ जिसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा बात करनी है और जिसकी वजह से मैंने सोचा था कि मैं बात करूँगा। देखें आजकल के अगर हम सिक्योरिटी मामलात को सामने रखते हैं, अगर आप एक साइड से इंटर होते हैं जुलूस के, वैसे तो ये इस्लामाबाद में भी होता है, पूरे पाकिस्तान में होता होगा आई एम डैम श्योर, क्योंकि इस्लामाबाद के अलावा मैं एक दफ़ा एक एबटाबाद के जुलूस में गया हूँ, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ देखी, और एक आध शहर में और गया हूँ वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ देखी। जुलूस के दाखिली और ख़ारजी रास्ते होते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक एक जगह से दाखिल हुए हैं तो आपने अगर निकलना है तो फिर आपको वही जो एक एग्जिट गेट है वहां से निकलना पड़ेगा, और दोबारा अगर जुलूस में शामिल होना है तो फिर आपको घूम के दोबारा आना पड़ेगा। तो ये जो नजरो न्याज का वहां पे मामलात होते हैं, जो स्टॉल्स लगे होते हैं, चाहे वो शरबत के हों, चाहे वो चाय के हों, चाहे वो पानी के हों, चाहे वो बिरयानी के हों, चाहे वो दाल चावल के हों, जिस चीज के भी हों, प्लीज इस चीज को समझें कि वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि आपको जरूरत के लिए बाहर ना जाना पड़े। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ बुजुर्ग हैं, आप खुद हैं, कोई मसला नहीं है, इंसान है, भूख लगती है, प्यास लगती है, और ख़ास तौर पे जो मौसम अभी चल रहा है, इस बार जो नवी का जुलूस था दैट वाज ऑन आई थिंक 25 जून इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जुमेरात का दिन था, 25 जून थी गालिबन। सो शदीद गर्मी थी, गर्मी है, रश है, आप चल रहे हैं, लंबा सफ़र है, सो कोई मसला नहीं है, पानी की सबील लगी है आप ज़रूर पिए, शरबत की सबील लगी है ज़रूर पिए, दाल चावल हैं, नान है, कुछ भी है, जो भी शख्स अपनी इस्तात के मुताबिक वहाँ पे सबीलें लगा के बैठा है, न्याज लगा के बैठा है, आप ज़रूर करें, लेकिन प्लीज़ खुदा रा उसको स्टोर ना करें। मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज देखी, वेल सेटल्ड फैमिली, एक तो होता है ना कि चलें आपको देखने से पता चल जाता है कि यार ये वो फैमिलीज़ हैं जो कि जिनको पता है कि यार अब कल भी मांग के ही खाना है, परसों भी मांग के खाना है, तो चलें वो इकट्ठा कर रही हैं इसलिए कि चलो यार एक दिन दो दिन तीन दिन आराम से गुजर जाएंगे, कल जो मांगना है तो बेहतर है आज ही इकट्ठा कर लो, वो आपको देखने से पता चल जाता है ना। लेकिन बा खुदा मैंने ऐसी ऐसी फैमिलीज देखी हैं, ब्रांडेड पर्स उठाए हुए हैं, उनके बच्चों ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, हाथों में ब्रांडेड घड़ियां पहनी हुई हैं, ब्रांडेड सनग्लासेस लगाए हुए हैं, यकीन करें खुदा की कसम, लेकिन इतने बड़े बड़े बैग्स उन्होंने भर लिए हैं जिसमें चावल डाल लिए हैं, जिसमें बारबेक्यू है। मैं इसके ऊपर भी, अब मैंने पहले भी बात की थी कि नवी मुहर्रम वाले दिन मेरा जाती अकीदा यह है कि सादा खुराक खानी चाहिए। देखें अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जहन में रख रहे हैं तो फिर हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितनी सादगी में रहें उस दिन, खुराक के हवाले से, लिबास के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से। हम शादी क्यों नहीं करते हैं? हालांकि शादी बजाते खुद तो मना नहीं है ना,
ये भी एक टॉपिक है ना कि भाई क्या शादी की जा सकती है। तो शादी बजाते अमल तो मुहर्रम में मना नहीं है। आप मुहर्रम वाले दिन करेंगे शादी, मुहर्रम में शादी करेंगे तो आपका निकाह तो होगा, आपका निकाह जायज भी होगा, आप मियां बीवी भी होंगे, आप पे गुनाह भी नहीं होगा, लेकिन आप क्यों नहीं करते। अच्छा, अब यहां पर एक चीज जरूर याद रखिएगा, मैं ये कहता हूं कि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर पूरा साल मौजूद है और एक महीना मंसूब है गमे हुसैन के साथ, तो आप मत करें, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग करते हैं, आप उनकी शादी को ये नहीं कह सकते कि शादी शादी नहीं है, उनका निकाह तो होगा, मामला ठीक होंगे, हलाल होगा, लेकिन क्यों नहीं करते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, मेरे से सवाल करें, भाई जिशान आपको क्या मसला, आप क्यों नहीं करना चाहते, तो इसलिए नहीं करना चाहते कि आप शादी को जितना भी सादा रखें वो सादा नहीं रहेगी। देखें, अगर आप मेहमानों को बुलाएंगे तो आप उनकी खातिर तवाज़ो तो करेंगे, खाना तो खिलाएंगे। अगर आप शादी करेंगे तो दुल्हन तैयार तो होगी, जितनी भी सादगी से तैयार हो तैयार होगी, आप खुद तैयार तो होंगे, घर में लोग तो आएंगे, मिठाई तो आएगी, मुबारकबाद तो दी जाएगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सो मेन मकसद ये है कि आप उस दिन में सादगी रखें। ये भी कुछ अपनी जगह पे कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे मामलात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब एक जगह दाल रोटी की अगर न्याज का स्टॉल लगा है, दूसरी जगह नान कबाब का लगा है, तो सारा रश नान कबाब पे होता है और उस चक्कर में लोग लेते हैं, फेंकते हैं, गिराते हैं। मैंने इतनी न्याज आया होते देखी है इस बार कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी एजुकेटेड फैमिलीज को मैंने देखा है, बड़े बड़े ब्रांडेड बैग्स रखे हुए हैं और उसके अंदर डाल रहे हैं, चावल डाल रहे हैं, हलीम डाल रहे हैं, शॉपर लाए हुए हैं घर से। मतलब क्या करेंगे आप? ओ भाई कितना खा लेंगे यार। मुझे एक बात बताएं, अगर आप फर्ज करें इस बार तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर की वो पूरी वॉक बनती है, जो मुहर्रम का जो 9th मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस है, जो G6 इमाम बारगाह से बरामद होता है, तकरीबन 6 किलोमीटर का वो रास्ता बनता है। और उस 6 किलोमीटर के रास्ते को चलने के लिए, चूंकि रश ज़्यादा होता है, तो 2-2.5 बजे अगर शुरू किया जाए उसको, मैं इस दफ़ा अपनी वालदा के साथ तकरीबन 2:30 बजे पहुंचा था और हमने जब उसको ख़त्म किया तो रात के 10 बज रहे थे। तो इतने रश में आप कितना ही खा लेंगे? मतलब चले हाँ, पानी आप रेगुलर पी रहे होते हैं क्योंकि गर्मी है, आप एक नान खा लेंगे, 2 खा लेंगे 3 खा लेंगे, कितना का आप खा सकते हो? और स्टोर करोगे, गर्मी है, ख़राब होगा, इवेंचुअली आप उसको फेंकोगे। सो जलूस के कुछ अदब हैं, अदाब हैं, और ये चीज़ पर आप अपने बच्चों को दिखा रहे हो कि बहुत बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यकीन करो कि मैं अब फिर मैं वही बात करूं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान बात करे तो लगता है कि पता नहीं शायद ब्रैगिंग हो रही है। मेरा ये मामूल रहा था इस दफ़ा 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम, चूँकि मैं जिक्र सुनने के लिए जाता था, तो मेरा ये था कि मैं बहुत सारी कैंडीज़ लेके जाता था कि वहाँ पे जो बच्चे हैं जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में, उनको जेहन में रखते हुए, नियाज़े अली असगर का एहतमाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको कैंडीज़ और बहुत सारा वो, मतलब आप यूँ समझ लें कि अराउंड 40-45 kg 40-45 किलो कैंडीज़ तकरीबन 10 दिनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट की होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से। बच्चों की कोशिश ये होती थी कि वो नीचे से फाड़ दें शॉपर, ताकि वो सारा नीचे गिर जाए और वो लूट के ले जाएँ। ट्रस्ट में वो एक आध दफ़ा तो मेरे साथ मेरा स्टाफ था, लेकिन मेरी कोशिश होती थी मैं खुद ये करूँ, खुद दूँ। सो ये चीज़ें फिर बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। बच्चों को बताएं, खाना बुरी बात नहीं है, नियाज़े हुसैन है, आप चल रहे हैं, आप पानी पिए, आप शरबत पिए, आप नान खाएं, आप चावल, लेकिन इतना खाएं जितना आपको वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आपको बाहर ना जाना पड़े। आप समझ रहे हैं, उम्मीद है कि कोई बात आपको गिरा नहीं गुजरी होगी। मेरा नाम जिशान नासिर है, आपके जल्दी से प्रोग्राम में इंस्टाग्राम से कमेंट शामिल करते हैं, उसके बाद फिर कुछ जिक्र और फिर आपसे इजाजत लेते हैं। मेरा नाम जिशान नासिर है, एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEEN NASIR 26, ये मेरे आपके रबते का एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे। आप मुझे अभी ज्वाइन करें, मैसेज करें, मैं अभी आपके मैसेज बराह रास्त शामिल कर रहा हूँ।

तुबा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं स्टोरी टेलिंग तो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, बस आई थिंक दैट वाज द रीजन दैट आई गॉट इनवाइटेड। तुबा चौधरी कह रही हैं वेरी वेल एक्सप्लेन, ऑलवेज अ प्लेजर टू लिसन यू। फरवा रुबाब हमारे साथ हैं, मरी गर्ल हमारे साथ हैं, तुबा मलिक वंस अगेन, इकरा मलिक हमारे साथ हैं, यमुना हमारे साथ हैं, हमजा हमें सुन रहे हैं, सुंदस हमारे साथ मौजूद हैं और मानी हमारे साथ मौजूद हैं, अरीश तनवीर हमारे साथ हैं, बिनते यूनस हमारे साथ हैं, मानूर ज़िया हमारे साथ हैं, महानूर फातिमा हमारे साथ हैं, मोहम्मद मनीब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइबा हमारे साथ हैं, इसरा हमें सुन रही हैं, इकरा खान हमारे साथ हैं, शहजादी हैं, नीमो हमारे साथ हैं, आर्ट फ्लैक्स इज सेइंग सर आपका शो सुनना बहुत रिलैक्स फील करवाता है, बहुत शुक्रिया जी। आमिर रहमान हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामतियाँ। वालेकुम अस्सलाम आमिर, क्या हाल है भाई, ठीक हो। आयज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और मायरा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, बहुत लोग कहते हैं कि यार रिस्क अल्लाह का है, अगर आपको कोई शक हो भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें, कोई मसला नहीं है। दूसरों के कुछ पड़े पे आपको यकीन है, अपनी बिस्मिल्लाह पे यकीन नहीं है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लें, कोई मसला नहीं है, खा सकते हैं। निसा सबीर हमारे साथ मौजूद हैं और हयात हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हयात, चलें शुक्रिया आपको, आपके सवाल के जवाब मिला। हुरिया मलिक हमारे साथ हैं, सिमरन मलिक हमारे साथ हैं, मलाइका हमारे साथ हैं, सलामुअलैकुम जिशान भाई, आबिदा परवीन का कलाम प्ले कर दें, मैं प्ले कर चुका हूँ जी। लाइबा अकरम हमारे साथ हैं, सफ़र हमारे साथ हैं, भाई सूफीज़म एंड तसफ़ुफ़ की रियल डेफिनेशन क्या होगी, वहादत तासुर वहादत शऊर किसे कहते हैं, एंड सूफीज़म में हमें किन किन चीज़ों पर अमल करना चाहिए, किन को ध्यान से लेकर चलना चाहिए। मेरे जो मेंटोर थे हैं बल्कि स्पिरिचुअल गाइड, वो मुझे एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने मुझे स्टार्ट में बता दी थी और बड़ी खूबसूरत बात थी, मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। मैंने आई थिंक शायद पहले ज़रूर बताई होगी, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ ताकि आप तक पहुँच जाए। मेरे जो स्पिरिचुअल गाइड हैं वो कहते हैं बेटा जो शरीयत है ना उसका नंबर है एक, और जो तज़फ़ुफ़ है या जो आपकी तरीकत है उसका नंबर है सिफर, अदद सिफर है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा, अदद। वो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ सिफर सिफर सिफर सिफर सिफर सिफर सिफर इकट्ठे करते जाएं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक आप शरीयत का एक सामने ना लगाएं। तो हमेशा याद रखिएगा नमाज नहीं छोड़नी और फिर उसके साथ इश्क के सारे। यार मैं मुझे समझ नहीं आती कि वो शख्स नमाज छोड़ कैसे सकता है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर रोता हो। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रोता है वो अपना सजदा कजा कैसे जाने देता है। बिनते इम्तियाज हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम। सानिया राजा हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं लिसनिंग यू एंड ऑलवेज फील प्लेयर। आलिया रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं, कब्बाली हीर हमारे साथ हैं, एमन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ ओके अननोन कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे नाम, अब मैं क्या पढ़ू।

इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है और अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो मैं चले आपको 5 मिनट देता हूँ, उसके बाद फिर हम कुछ जिक्र की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप प्लीज अब कॉल तब करें अगर आपका कोई सवाल है। अभी देखें आपको पता चल जाएगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कितनी लंबी गुफ्तगु की कि किसी का हक नहीं मारना, न्याज थोड़ी लेनी है। न्याज सिर्फ बुरकी खाने की नहीं होती। आपको पता है इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रिज्क की सैकड़ों इकसाम हैं और सबसे छोटी किस्म वो है जिसको नवाला बना के तुम मुंह में डालते हो। सेहत रिस्क है, औलाद रिस्क है, अच्छी बीवी रिस्क है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिस्क में आती हैं। सो अब सिर्फ वो कॉल करे जिसका कोई सवाल हो, सवाल के बिना कॉल नहीं करनी। और मैं लिख के दे देता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अभी चेक करें, ये हमारे माशरे का एक एक चेहरा है जो अभी आप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर बताइए। अच्छा चेक करें, झुग्गी वाली कहानी सुनने की फरमाइश दोबारा कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, बाहिसत मौशरा देखे हम कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग जो मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट करते हैं, दे एक्चुअली वांट टू हैव सम क्वेश्चंस। मैं सबको कैटर नहीं कर सकता। क्यों? किसी ने सवाल किया, फिर मुझे उसको आंसर करना है, फिर उसका रियल टाइम वो लेना है। जब आप कॉल पे क्वेश्चन करते हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि इंस्टेंट आप आंसर लेके इंस्टेंट कोई अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे बता सकते हो। तो अभी टेलीफोन लाइन्स ओपन है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन के लिए कॉल कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, लेकिन अगर कोई सवाल है तो खड़काएं फ़ोन।

0: हाँ यार, मैं इससे पहले भूल जाऊं, एक लेटर आया था रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 इस्लामाबाद के पते पर। भाई अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, पहले इनकी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जी वालेकुम सलाम, बोलिए
1: भाई। एक आपसे प्रश्न है।
0: जी जी पूछिए।
1: एक जन्म की हुई से अगर आप पूरी कर सकते हैं तो।
0: सॉरी
1: क्या? तो चैलेंज की विषय से अगर आप पूरी कर सकते हैं तो।
0: किस चीज की विषय?
1: तो छोटा सा आपको 2 सेकंड लगेंगे।
0: जी जी बताइए।
1: आप एक लड़की है हकजादी फातिमा, उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें।
0: ठीक।
1: तो वो कहते हैं मेरी लाइफ की ना।
0: ठीक है। सिर्फ देखें कि हम किस सतह पे खड़े हैं। जस्ट इमेजिन कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप सवाल कर सकते हैं करियर से रिलेटेड। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मजहब से कोई रिलेटेड या कोई सी ऐसे, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ देखें कि हम कहाँ खड़े हैं और मातम करें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो। जी वालेकुम सलाम।
1: शांति, मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो सुरीत होती है, मतलब ये जो देते हैं शरबत देते हैं, इसमें वो कहते हैं कि वो जो उनकी जो चुनाव होती है, जो गोद होती है, उसको उसके अंदर शरबत के अंदर उसका वो मतलब वो उसको जूठा करके देती है, तो क्या ये सच है या ऐसे लोगों की बातें हैं? क्योंकि एक वीडियो भी मैंने देखी थी ना,
0: जी मैं बता देता हूँ, मैं आप ऑन एयर सुने मैं बताता हूँ। ठीक है
1: ठीक है।
0: ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर सवाल है, मैं इसको आंसर ज़रूर करता हूँ, लेकिन दुनिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हम अभी तक वो सवाल कर रहे हैं जो कि मैं छोटा था तो हम सुना करते थे कि जो सबील होती है उसको पहले जुलजना को पिलाया जाता है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मेरे घर में नियाज़े हुसैन अलैहिस्सलाम का अहतमाम हुआ। मैं हल्फन कह सकता हूँ कि ऐसा कोई तरीका कम से कम मेरे घर पे तो नहीं हुआ, और अगर कोई ऐसा करता है तो गलत करता है। बाकी रही बात वीडियोस की, तो बहुत सारी वीडियोस आजकल एआई बनती हैं, कुछ रियल भी अगर होंगी और अगर किसी ने किया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। बाकी आपका सवाल था कि क्या ऐसा हर उसमें होता, नहीं तो हर में नहीं होता, ये मैं हल्फन भी कह सकता हूँ कि हर में नहीं होता, कभी कभी जो है वो हो सकता है। कॉल कट गई है, आवाज़ कट गई है, या कॉल कट गई है? सर आवाज़ कट गई है, कॉल कट गई है, सब ठीक है, आवाज़ आ ही नहीं रही मुझे, तो आ रही है हेडफोन्स में। चेक करें ज़रा, मैं कमेंट्स भी चेक कर लेता हूँ।

0: गया सूरज।
1: आवाज तो आ रही है सर, मेरी प्रोडक्शन रूम में अगर आवाज आ रही है तो आ रही है, वहां नहीं आ रही है, वैसे यहां से तो आवाज आ रही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। वेल जनाब, बतौर ड्यूटी ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद आसिफ अली अब्बासी साहब, और बेहतरीन अंदाज में अपनी ड्यूटी की फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए, आई थिंक गालिबन शायद बाहर आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, उन्होंने फटाफट हमें बताया कि क्या आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम
2: वालेकुम
1: जी, वालेकुम सलाम।
2: एक सवाल है, कहते हैं जब हमें किसी से मोहब्बत होती है तो उससे नहीं होती बल्कि अल्लाह ताला की सिफत से होती है जिसके अंदर मौजूद होती है।
1: हकीकत
2: तो मेरा सवाल ये कि आपने कहा था ना कि आपको इमाम से मोहब्बत हो गई थी, तो आपको सबसे पहले उनमें तो बहुत सारी सिफत है, तो आपको क्या नजर है ऐसा?
1: किससे मोहब्बत हो गई थी?
2: इमाम अली अलैहिस्सलाम।
1: हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा सवाल है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बड़ा अच्छा सवाल है। कहती हैं कि कहीं मैंने पढ़ा है कि जब आपको किसी शख्स से मोहब्बत होती है तो वो बेसिकली उसकी सिफात से मोहब्बत होती है, और सिफात सारी अल्लाह से रिलेटेड हैं, तो आपने कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से आपको मोहब्बत हुई, तो कौन सी सिफत? अब इमाम अली अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम हिज सादगी टू हिज लाइक बहादरी टू हिज विजडम, आई मीन यू जस्ट नेम इट, आप किस किस एंगल से उनको मोहब्बत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप प्रिसाइजली मेरे से पूछते हैं, मुझे सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी के जिस पहलू को पढ़कर मैं मुतासिर हुआ, या मुझे एक होता है ना दीवानगी की हद तक उनसे उनसियत हो गई, वो उनकी खामोशी है। कोई बंदा ताकत रखते हुए इतना सब्र करता हो, भाई कमाल है। वो जो खामोशी है ना, वो जो एक बेनियाजी, उसके बाद फिर एक बेनियाजी। चले मैं आपको एक वाक्या बताता हूँ, द अदर डे आई वॉज रीडिंग इट, तो मैंने जब यकीन करें वो पढ़ा, और अली वाले ज़रा आए यार, ये अली वालों से मुराद हम अल्हम्दुलिल्लाह सभी अली वाले हैं, सभी मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना ज़रा कोई दीवाने से जो होते हैं, ज़रा वो पहली सफ़ में आए। मैं आपको एक वाक्य सुनाऊँ, पीछे बच्ची के सवाल से अच्छा ये हुआ, भरकर ये डली कि वाक्य याद आया, ज़रा अली वाले सामने आए फिर वाक्य सुनाता हूँ, ज़रा जल्दी पहली सफ़ में आए, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, पहली सफ़ में आए फिर बताता हूँ। ऐसा वाक्य है कि झूम जाएंगे आप।

0: वो जो बेनियाजी है ना मौला की दुनिया के साथ। हुआ एक बार यूं कि मौला अपनी जूती को सिलाई लगा रहे थे, जो उनकी जूती है उसको गांठ रहे थे। तो एक साहब गुजरे, उन्होंने कहा कि मौला आप नई जूती खरीद लीजिए, नई लाल ऐन जो है वो ले लीजिए, नई जूती ले लीजिए, तो बहुत पुरानी हो गई और बहुत बार हमने देखा है कि आप इसको सी रहे हैं, इसको गांठ लगा रहे हैं, इसकी सिलाई कर रहे हैं, इसको ठीक कर रहे हैं, तो हमने तो बहुत बार देखा है, तो आप कोई नई जूती ले लीजिए। तो मौला मुस्कुराए और उस शख्स से कहा कि तुम्हारे नजदीक इसकी क्या कीमत होगी अगर मैं इसको बेचूं तो।
1: कमली वाले,
0: अब जरा सुनिएगा यार, सुनिएगा यार, मैं खुदा की कसम ये जगह थोड़ी है, ये कायनात थोड़ी है, मैं रक्स करूं इस दुनिया को, काश मैं समझा पाऊं, आप समझ पाए,
1: मेरी
0: पत्थर पे पाँव मारूं, धूल उड़ाऊं। तो मौला ने मुस्कुराया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि इस जूती की कीमत कितनी होगी। तो शख्स ने कहा कि मौला जितनी ये पुरानी है और जितनी बार आपने इसको सी रखा है, ठीक कर लिया है, आप इसको अगर बेचेंगे भी तो उजरत शायद ना होने के बराबर मिले। जो उजरत है वो इतनी मिले जो शायद ना होने के बराबर हो। तो मौला मुस्कुराए और कहा कि मेरे नजदीक तुम्हारी इस दुनिया की कीमत इतनी भी नहीं है जितनी तुम्हारे नजदीक इस जूती की है। हाय हाय हाय हाय हाय, चलें आप सब तारीख का मुताला करने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बाखुदा में से चंद लोग तो ऐसे हैं उनका इश्क देखकर मुझे रश्क आता है। अल्लाह ताला आपको बारोज़े मैशर मेरी निजात का बायस बनाए। आप सब मुताला करने वाले लोग हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं। जब खैबर फतह हुआ सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिला, माल गनीमत जब तकसीम किया गया सबसे ज्यादा हिस्सा किसको मिला, आप सब ने तारीख पढ़ी होगी, बताएं जरा जल्दी पढ़ाएं, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ।

मौला आपको सलामत रखे। मौला इस उठने वाले हाथ, बोलने वाली जुबान, देखने वाली आंख, सुनने वाले कान कभी किसी कम जर्फ का मोहताज ना हो। ये हाथ मौला की विला में उठते हैं, मौला इनको इमाम जमाना के पाँव पे लगाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी लिखा कि सबसे ज्यादा हिस्सा इमाम अली अलैहिस्सलाम को दिया गया माल गनीमत का, और बनता भी था क्योंकि मौला ने फतह करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मैन ऑफ द मैच थे वो, तो उस हिसाब से उनको माल गनीमत दिया गया। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब मौला वापस अपने घर पहुंचे तो कितना माल था उनके पास, अब बताएं। पहला सवाल तो आसान था क्योंकि सब जानते हैं कि मौला मैन ऑफ द मैच थे। अब सवाल यह है कि जब वो घर पहुंचे तो कितना था उनके पास, जरा आप इसका जवाब दें।

जब घर पहुंचे, ऐसा नहीं है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की कोई जिम्मेदारियां नहीं थीं या कोई उनके घर बार कोई ऐसा नहीं था कि जिसको उस माल की जरूरत ना रही हो, और ये माल उन पर हलाल है, ये माल उनको हक का मिला है, उनका है, उनकी मलकियत है। अब घर भी ले जाएं तो कोई सवाल ना कर सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, सबसे ज्यादा माल मिला। और जब तक घर पहुंचे सिर्फ हाथ में जुल्फिकार थी, सब बांट आए रस्ते में। फिर ऐसे ही तो नहीं कुरान में आ गया खुदा कहता है कि मैं तेरा वली, ऐसे नहीं, मैं घबरा के नहीं पढ़ रहा, तू घबरा के ना सुन, कमजोर दिल की बात ही नहीं है अली सुनना। मैं आयत का मफहूम तर्जुमा पढ़ूंगा, चेहरा देखूंगा। खुदा इस रात के आखिरी पहर विला में बुलंद होने वाले हाथ कभी किसी कमजर्फ का मोहताज ना कर मेरे बादशाह। ऐसे ही अल्लाह ने नहीं कहा कि एक मैं तुम्हारा वली, एक मेरा रसूल तुम्हारा वली, और एक वो वली जो हालते रुकू में जकात खैरात करता हो।

यार खुदा आपकी मददतें आपकी मोहब्बतें सलामत रखे। मैं सारी रात पढ़ता रहूं, मुझे पता है आपका दिल नहीं भरेगा। मैंने अभी इंस्टाग्राम देखा है तो आप में से बहुत सारे लोग ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से रिलेटेड, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कोई वाकया मैं पेश करता हूँ जी। हमारी ज़ुबानें इस पर नहीं चलनी, हमारी सांसें इस पर नहीं चलनी, हमारा कलाम इस पर नहीं होना, तो फिर होना किस पर है। लेकिन अब वादा फिर मुझे आपसे लेना है कि दो बज चुके हैं, मुझे आपका ख्याल है, इम्तिहान आपका नहीं है। इबादत मकसद है, इम्तिहान मकसद नहीं है। आप अगर ये देख सकते हैं, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों का वर्किंग डेज भी होगा, कि अगर है 15-20 मिनट आधा घंटा आपके पास तो फिर मैं सुनाना शुरू करूं। हुक्म करें।

बड़ा दुनियादार है भाई वो बंदा जिसका इन जुमलों पे हाथ फजा में बुलंद नहीं हुआ, बड़ा दुनियादार है वो बंदा। वाक्या मुकम्मल नहीं हुआ, वाक्या आगे है, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। मैं बाखुदा सारी रात ये वाक्या पढ़ता रहा हूं, ये मौका पढ़ता रहा हूं। जनाबे सज्जाद बेटे हैं, जनाबे अली अकबर बेटे हैं, सारे शेर हैं, वक्त के अली हैं, जनाबे हनफिया भाई हैं, जनाबे अब्दुल्ला शौहर हैं, जनाबे सैयद आके नहीं नहीं नहीं नहीं दाखिल हजरत अब्बास हुए, बाजू छोड़ा, कहा हुसैन अब जाब मैं मुतमईन हूं। कितना माण है गाजी ते,

अब मान क्यों है, अब जरा ये देखिएगा, अब आगे बढ़िएगा, अब आंख वजू करेगी आपका। खुदा सलामत रखे इन मोहब्बतों को, इन मवद्दतों को सलामत रखे। बा खुदा कुछ नहीं पड़ा जिंदगी में, कुछ भी हम कर लें जिंदगी में, कुछ भी कर लें, ख्वाहिशात खत्म नहीं होती हैं। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, खत्म हो जाएगी जिंदगी। ना मैंने सारी जिंदगी पढ़ना है, ना तूने सारी जिंदगी सुनना है। रहना है तो इस जिक्र ने रहना है। जनाबे सैयदा ने बाजू छोड़ दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। अब मैं आपके सामने जुमले रख रहा हूं, कोई जुमलों का मोल डालने वाला शख्स अगर है, कोई पहली सफ में आगे बैठे, जुमले आपकी समझ में आए, जुमलों पर हाथ फजा में बुलंद ना हो, दुआ न दी मेरी मेहनत, खताबत, कलम, अल्फाज परेशान खड़े होंगे। जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम तैयार होना शुरू हुए, सर पे रसूल अल्लाह वाली पगड़ी, कांधे पर इमाम अली अलैहिस्सलाम वाली चादर,

एक मकाम पर पहुंचे तो आगे से ये ऑर्डर आया, आगे से ये एक गुजारिश आई। औकात उसकी क्या कि ऑर्डर करता, एक गुजारिश आई कि अकेले आइए, अपने साथ ना कोई बेटा लाइए ना कोई भाई लाइए, अकेले मुलाकात करनी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तैयार, सर पे रसूल अल्लाह वाली पगड़ी, कांधे पर इमाम अली अलैहिस्सलाम वाली चादर। जैसे एक शेरे बबर शिकार के लिए निकलता है आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की जानिब रवा जहां पर मुलाकात का वक्त तय है। करीब पहुंचने के बाद उसके एक हवारी ने कहा कि कहा ये जा रहा है उसकी जानिब से कि अकेले आइए, ना कोई भाई साथ आए ना कोई बेटा साथ आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुड़ के पीछे देखा, जनाब अली अकबर साथ मौजूद, जनाब हनफिया साथ मौजूद, जनाब सज्जाद साथ मौजूद, जनाब अब्दुल्ला साथ मौजूद, जनाब अब्बास साथ मौजूद। जब पीछे मुड़ के देखा उस शख्स ने कहा कि साथ कोई ना आए, सब ने तलवार की नियामों पे रखे हाथ। ओ भाई आप क्या सुना रहे हैं, मैं क्या सुन रहा हूँ, बा खुदा वो सुन ही नहीं रहा बंदा जिसकी रूह इस वक्त रक्स ना करे। थोड़ा सा वक्त और चाहिए, थोड़ा सा वक्त और दो, पता नहीं मेरा पढ़ना आखिरी हो तेरा सुनना आखिरी हो। मैं बीच में वक्फा लेके देखता हूं कि तू मेरे साथ किस मकाम पे है। इबादत होती वो है जो ठहर ठहर के की जाए।

मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बिल्कुल उस जगह के करीब मौजूद। हवारी ने पैगाम पहुंचाया, कहा यह जा रहा है कि ना कोई भाई साथ आए ना कोई बेटा साथ आए। मौला ने पीछे मुड़ के देखा, अली अकबर मौजूद, जनाब कासिम मौजूद, जनाब सज्जाद मौजूद, जनाब हनफिया मौजूद, जनाब अब्दुल्ला मौजूद। और मजे की बात, जुमला ले लो यहां से इससे पहले कि आगे बढ़े, सारे के सारे शागिर्द हैं हजरत अब्बास के, सारे के सारे शागिर्द हैं हजरत अब्बास के। यही वजह है कि जब जनाब कासिम ने रोजे अशूर सरों पर सर गिराने शुरू किए, एक शख्स को दूसरी जानिब से भेजा गया जो हजार आदमी से लड़ता था, जनाब कासिम ने पहले वार में फिलनार किया, हजरत अब्बास खड़े हैं, कह रहे हैं बता ना इसे तेरे उस्ताद का नाम अब्बास है। माफ कीजिएगा लेकिन बताना इसे तेरे उस्ताद का नाम अब्बास है। अब इससे आगे का सफर मुश्किल है, तो वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें सर अजीज हैं, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें सर अजीज हैं, जिनके हाथ जुम्बिश नहीं कर सकते, जिनकी सोच के घोड़े साथ नहीं दौड़ सकते, वो यहीं से लौट जाएं जिन्हें सर अजीज हैं। हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले,

मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि इमाम हुसैन अलैह सलाम, इमाम अली अलैह सलाम, ये सब दिलों की ठंडक, दिलों की जान, लेकिन जो हमारी मस्तूरात का एक रूहानी ताल्लुक, फितरी ताल्लुक हजरत अब्बास के साथ है, मैंने अपने घर पे देखा है, वो एक अलग ही है। जो हमारी मस्तूरात हैं, जो माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ हैं, जिनका एक रूहानी ताल्लुक हजरत अब्बास को लेकर है। 1400 साल बाद तुम्हें इतना मान है, जनाबे जैनब को कितना मान होगा। कासिम मौजूद, अकबर मौजूद, हनफिया मौजूद, अब्दुल्ला मौजूद, सज्जाद मौजूद, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। हजरत अब्बास बीबी मैं साथ हूँ, हाँ हुसैन अब जाब मैं मुतमइन हूँ। मार कैफ हवारी ने कहा कि ना साथ बेटा आए ना साथ भाई आए। मौला ने पीछे मुड़ के देखा, कहा मैं बतौर इमाम तुम्हें बता रहा हूं, मैं ये जुमला कितनी बार कहूं, जुमला किस तरह पैवस्त करूं तुम्हारे जहन में। मैं बार बार रुकता इसीलिए हूं कि जुमले समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।

शहनशाह हुसैन, मक्तल के जुमले हैं। अगर आप मक्तल को पढ़ते हैं, तारीख को पढ़ते हैं, एक वक्त ऐसा आया जनाब अब्बास शहीद हो गए, जनाब अली अकबर के सीने में बर्छी लग चुकी, जनाब कासिम के टुकड़े हो चुके, जनाब अली असगर को उस तीर से शिकार किया जा चुका जिस तीर से हाथी को गिराया जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐन मैदान में मौजूद, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास जो हथियार था उसने हुसैन पे इस्तेमाल किया, तीरों की बरसात हो चुकी, जीन और ज़मीन के दरमियान इमाम हुसैन मौजूद। किसी ने कहा कि लगता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया है हमने, अब कोई मर्द बचा नहीं है इनके यहाँ, अब रुख खैमों की तरफ किया जा सकता है। ये सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई, ओ मैं जिंदा हूँ, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि

चा छिकन लगा फल बरचीदा, होई कुल मुरसल हैरान। शाह छिकन लगा फल बरशीदा, होई कुल मुरसल हैरान। खड़ा मलकल मौत हुसैन नु आखे, ओ तेरे अकबर दार मान, ओ तेरे अकबर दार मान। खड़ा मलकुल मौत हुसैन नु आखे, ओ तेरे अकबर दार मान, ओ तेरे अकबर दार मान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम अन्न।

वो नूर है, तू खाक है, तेरी औकात क्या। हुसैन पुत्र अली दाई साबत कीता है करबला दे जुमले आके आन, जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा।

खुदा की कसम मेरा दिल करता है मैं अब्बास पढूं, तेरी आंख वजू करे, तेरे हाथ वला में बुलंद हूँ। चंद शार में पेश कर रहा हूँ, फिर खुदा हाफिज, फिर या जिंदगी या नसीब, इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास। सलामत रहो भाई, सलामत रहो, सलामत रहो। तमाम तर मस्तूरात जो सुन रही हैं, हाथ बुलंद हो रहे हैं दुआ के लिए, बुलंद हाथों से दुआ करना। जो भाई सुन रहे हैं, बुलंद हाथों से दुआ करना। इन बातों को आज ना समझो, कल समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना, बच्चों को समझा देना। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, ऐसे नहीं, मेरे साथ आओगे, मेरे साथ आओगे। बस खत्म कर चुका, 5 मिनट में खत्म कर चुका, छोड़ के जा रहा हूं, अगले 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास। करबला एक जुमले में सुना सकता हूँ, करबला एक जुमले में सुना सकता हूँ। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, मैं सारी रात जुमले कहता रहूं, तू सारी रात रक्स करता रहे। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास। करबला एक जुमले में सुना सकता हूँ, दिले शब्बीर अज़्मे ज़ैनब, हाय हाय हाय हाय, जुमला कह के तेरा चेहरा देखूंगा। जिसे हाथ बुलंद करने के लिए हाथ गाजी के सदके में मिले हैं, मैं देखता हूं कि अब कितना कोई अमीर है वो आदमी जो हाथ बुलंद नहीं करता। मुश्किल से मुश्किल दुआ रख दिल में। इतनी भर जाए आंखों में जियाए अब्बास, मुझे कुछ ना दिखाई दे सिवाय अब्बास। करबला एक जुमले में सुना सकता हूं, करबला एक जुमले में सुना सकता हूं, दिले शब्बीर अज़्मे ज़ैनब, दिले शब्बीर अज़्मे ज़ैनब, दिले शब्बीर।

मैंने कहा ना, ये बेटे, ये बच्चे, ये बेटी अली की हैं। इनमें जहां आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जो इनके जुमले हैं, जो इनके फिरके हैं, ये जो फिरके में बटे हुए लोग हैं, मैं हमेशा कहता हूँ खुदा गारत करे इन लोगों को जो फिरके की मोहब्बत में जिक्र करते या जिक्र रोकते हैं। फिरके को छोड़िए, फिक्रों पे बात कीजिए, उन फिक्रों पे जो जहन में है, और उन फिक्रों पे जो जनाबे सैयदा ने यजीद के दरबार में कहे। मैंने कहा ना कि जैसे जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा, जुल्फकार तो बहुत बहुत आराम से मारती होगी, असल वार तो इनके जुमले करते हैं, जुल्फकार तो बहुत आसानी से मारती है। अब ये जुमला देखिए, लईन ने कहा, दुख है, गम है इसको इस बात का कि मैंने इसके बेटे मार दिए, इसके भाइयों को शहीद कर दिया, इसके भतीजे को शहीद कर दिया। काम अलाउन, भाई का दुख अपनी जगह, भतीजे का दुख अपनी जगह, बेटों का दुख अपनी जगह। इस लम्हे सबसे ज्यादा दुख ये है कि मुझे तुझ जैसे से बात करनी पड़ रही है।

ये जुमले हजरत अब्बास ने बारहा कहा, हुसैन इजाजत दे मैं पूछूं इनमें से कौन है जो बैत का तलबगार है। हाय हाय हाय हाय हाय हाय, कौन है जो हुसैन से बैत मांग रहा है? इमेजिन, जस्ट इमेजिन। अब्बास पूछे, हाँ भाई किसको बैत चाहिए हुसैन की?

यमुना हमारे साथ मौजूद हैं, रूह को तरोताजा कर दिया आपने बाखुदा, बहुत शुक्रिया यमुना, अल्लाह ताला आपको सलामती दे, बहुत बहुत शुक्रिया। फरवा रुबाब हमारे साथ हैं, आर्ट फ्लैक्स हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा आप वैसे ही दुआ मांग लें, अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे, उनको दिल में रख के उनका वसीला डाल के दुआ मांग लें, दुआ कबूल फरमाएंगे अल्लाह इंशाल्लाह। मानी हमारे साथ हैं, कहने सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। इकरा हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ लाइबा हमारे साथ हैं, तूबा चौधरी हमारे साथ हैं, इकरा खान हमारे साथ हैं, सुंदस हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ अहमद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं मौला आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं और

मैं जनाब ये ग्रुप लीव कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर समझा नहीं सकता तो मैं अपने आप को तो समझा सकता हूँ. तो आप लोग कैरी ऑन रखें, मैं एज प्रोटेस्ट इसको समझ लेंगे, मैं लीव कर रहा हूँ क्योंकि वो अभी भी शायद मरी जाने का कोई प्लान बन रहा है वहाँ पर. तो आप ज़रूर जाएँ, अल्लाह ताला आपको बखैर वाफियत लेके जाए और लेकर आए. लेकिन बहरहाल आप लोग अपना ख्याल रखें और प्लीज़ मुझे इन चीज़ों से दूर रखें. किंजा क्वीन हमारे साथ हैं, इसरा हमारे साथ हैं, अहमद मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं लव यू ब्रो, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया. मोहम्मद मुनीब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ साथ सारा हमारे साथ मौजूद हैं. उसके अलावा जनाब कौन है, मैं जल्दी से आपके हमना कह रही हैं दे आर न्यूज़ ईशानियन दैट्स वाई दे कांट अंडरस्टैंड. यार न्यू हूँ या पुराने हूँ इतना तो इंसान थोड़ा सा, वैसे भी अगर अब तो चलें पहले नहीं भी समझ आ रही थी, अब तो मैंने कह दिया था कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो फिर अब तो खैर बहरहाल कोई बात नहीं. मैं मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं इस तरह के पैटी इशूज़ के ऊपर बात करूँ. आगे बढ़ते हैं. तैमूर हसन अतारी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं मौला आपको सलामत रखे, माँ हुसैन की राजी हूँ आप पर, बहुत बहुत शुक्रिया. हयात हमारे सामने, हयात बहुत बहुत शुक्रिया. हुरिया हमारे साथ हैं, मौसन हमारे साथ हैं, सिमरन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. बाला खातून हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रहमान हमारे साथ हैं, तूबा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं आँख का वजू करवा दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया जी. आपको खबर है कि मसाइब के दौरान कौन कौन सी हस्ती मौजूद होती है? मैं अब क्या बताऊँ, बहुत सारी बातें नहीं समझाई या बताई जा सकती. बाखुदा अगर आप मुताला करते हैं, कभी आप मुताला करें, तो मैं कैसे आपको बताऊँ कि ये ऐसा नहीं है कि आप बस मैं मसाइब पढ़ देता हूँ आप सुन लेते हैं. पता नहीं कौन कौन सी हस्ती रूहानी तौर पर मौजूद होती है.

कोशिश कीजिएगा ये आंख का जो वजू आपने किया है अब वजू करके आप ये जबीन खुदा ताला के सामने ज़रूर झुकाइएगा, शुक्र अदा कीजिएगा, अल्लाह तूने हुसैन जैसे इमाम अता किए, तूने अली जैसे इमाम अता किए, शुक्र अदा कीजिएगा अल्लाह का, ज़रूर नमाज अदा करके सोइएगा। 3 बज गए हैं ऑलमोस्ट, मुझे भी अब घर जाना है, मां रात तकती होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और ये गम आपको सजदे की हालत में जाकर खुदा से रो कर मांगना पड़े तो ज़रूर मांगिए, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। छोड़ फरीद ना यार दामन दुहा जहाँ ना दाओ साढ़े जामन उदामन, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और वो दामन मत छोड़िए, रसूल अल्लाह का दामन है, वो दुनिया और आखरत में हमारे दामन है। जितना पैर होवे उतना ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर होना दे सदके साड़ी भी खैर। और जैसे कि मैंने कहा कि आई एम वेरी हम्बल टू बी कंसिडर्ड एंड इन्वाइटेड बाय देम टू टॉक अबाउट द स्टोरी टेलिंग थिंग, सो प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह, क्योंकि आई थिंक सैटरडे को डेफिनेटली आई विल कम टू डू द प्रोग्राम उससे पहले, लेकिन अगर ना आ सका तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे मुलाकात होगी। और बस दुआ मेरे लिए कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे खैर की गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए, किसी के लिए ख़ास तौर पर स्पेशल बच्चों के लिए खैर की गुफ्तगू और उनके फ़ायदे की गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी मेरा दामन तो खाली है, और कुल आलम दी खैर उन्होंने सदके साड़ी भी खैर, हक मौजूद सदा सदा सदा मौजूद, ज़िंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ीशान नासिर साइंस आउट, अल्लाह हाफिज़, तुम्हारा पूकी जा रहा है, पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद।

जब तू आएगी, जब तू आएगी। 101 FM

उन्होंने कहा कि उसकी सजा ये कि जिसके शलीते में वो दस्तियाब हो वही उसका बदल करार दिया जाए। हम जालिमों को यही सजा दिया करते हैं।

बेटा यूं करो कि एक दफा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो कि अल्लाह की रहमत से बेईमान लोग ना उम्मीद हुआ करते हैं।

उनसे पूछो कि आसमानों और जमीन का परवरदिगार कौन है, तुम ही उनकी तरफ से कह दो कि अल्लाह। फिर उनसे कहो कि तुमने अल्लाह को छोड़कर ऐसे लोगों को क्यों कारसाज बनाया है जो खुद अपने नफे और नुकसान का भी इख्तियार नहीं रखते। ये भी पूछो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हैं या अंधेरा और उजाला बराबर हो सकता है। भला उन लोगों ने जिनको अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया है क्या उन्होंने अल्लाह किसी मखलूकात पैदा की है जिसके सबब उनको मखलूकात मुश्तबा हो गई है। कह दो कि अल्लाह ही हर चीज का पैदा करने वाला है और वो यक्ता और जबरदस्त है।

0: कर।
1: उसी ने आसमान से मेह बरसाया, फिर उससे अपने अपने अंदाजे के मुताबिक नाले बह निकले, फिर नाले पर फूला हुआ झाग आ गया, और जिस चीज को जेवर या कोई और सामान बनाने के लिए आग में तपाते हैं उसमें भी ऐसा ही झाग होता है। इस तरह अल्लाह हक और बातिल की मिसाल बयान फरमाता है, सो झाग तो सूख कर जायल हो जाता है, और पानी जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। इस तरह अल्लाह सही और गलत की मिसालें बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।